या माया मोहि विसारिया सच मरना हर नाम तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई नानक अनहद धुनी दरवाजे दे मिलिया हर सोई सलोक महला तीजा गुर का कहया जी करे सुखी हूं सुख सार गुर की करनी पौ कटिया नानक पावे पार महला तीजा सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए गुर कै भाणे जे चल बहुड़ ना आवन होए नानक नाम वसारे आवन जाना दुए पौड़ी मंगत जन जाचे दान हर देहु सुभाए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए सतगुर नाल दिखालिया रल रहिया सब थाए सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए सलोक महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे सेठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखिया सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन को जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हिरियाणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो न कटिए फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याई दे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणजह सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चलह सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भय निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग बजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सेती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै।

चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारत जात राजा श्रम इत नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हो चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हस्से वस्तु होए होए सो उज्जर।

मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहे, जेह बा स्वादी लीलत लोह।

गऊ बास कौ संत्या खीर गला बांध दोहे ले आहीर माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाडे तरे अत संचय समझे नहीं मूड धन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरै।

पूरा दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाउ मेरी बांदी भगत छिडावै।

निफल भई सब सेवा, बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड़ मन हर बेमुखन को

हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस साबे अर्प्यो, आनंद सहज तुन झोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भिखे, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज न कछु है, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत,

आदि हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किस तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतना कलागे ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांचो हो सब जन का कह कभी।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साध न जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बरस घना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सियों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तो धन साच सिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पात पा।

पीतर अमृत सोई जन पावै जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाउ दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनु नदर करे करतार काया महल मंदर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बलाई हर मेले मेलन हार मलार महला पहला घर दूजा।

तन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट महसास सास गए काया ढल पाए ताके पाछे कोई ना खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस साचे नाए मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो ना सीजे दे अंत का

ब्रह्मा बिचन में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूके मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आ

जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हों मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे निवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाउ त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हौ मैं कर्म कमाए साहिब भावे सो थीऐ पये किरत फराए सतगुर भेटै मन मर रह हर नाम वसै मन आए तिसकी कीमत ना पवै कहना किशु ना जाय चौथे पद वासा होया सच्चे रह समाय मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है कीमत कहन ना जाय गुर प्रसादी बुझी शब्दे कार कमाय नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाय मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला बूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिले शांति उपजै अनदिन नाम लय मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुर

त्रिपतास्ते सत्य नाम समवाहि आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाहि सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकथ कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारंग पाणी आवन जाना बहुड़ न होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों हो आप गवाया।

सच सोई नानक नाम प्रभु ते पाईऐ जिनको धुर लिखिया होई मलार महला तीजा गण गंधर्व नामे सब उदरहि गुर का शब्द विचार हमै मार सद मन वसाया हर राखिया उर तार जिसह बुझाए सोई बूझै जिसनो आपे लय मलाए अनदिन बाणी शब्दे गावै साच रह निवलाए मन मेरे खिन खिन नाम संभाल गुर की दात शब्द सुख अंतर सदा निबह तेरे नाल रहाओ मनमुख पाखंड कदे ना चूकै दूजे पाए दुख पाए नाम विसार बिकिया मन राती बिरथा जन्म गुआय एह वेला फिर हाथ न आवे अन दिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे ना बूझे विष्टा माही समाए गुरमुख नाम रते से उदरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम ते आया।

अंतर वसिया अलाखिय पीवा गुरमुख हुए लखाई। नानक जिस भावै तिसे आपी दीवै भावै तिवें चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जानै अन दिन लागै सद हर स्यों ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इहो मन खिलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जा आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हू जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे आसमाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर कै शब्द हर त्याई।

हे गुरमत बुद्ध पाई मन तन प्राण धरी तिसे आगै नानक आप गवाई मलार महला तीजा मेरा प्रभ साचा दुख निवारण शब्दे पाया जाई भगती राते सद बैरागी दर साचै पत पाई मन रे मन स्यों रहो समाई गुरमुख राम नाम मन भीजै हर सेती लिव लाई रहाउ मेरा प्रभ अति अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई सच संयम करनी हर कीरत हर सेती लिव लाई आपे शब्द सच साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मलाई देही काकी पौन बजाए गुरमुख अमृत पाई आपे साजे सब कारै लाए सो सच रहिया समाई नानक नाम बिना कोई किश नाही नामे दे वडाई मलार महला तीजा हम मैं बिख मन मोहया लद्या अजगर पहारी गरड़ो शब्द मुख पाया हम मैं बिख हर मारी मन रे हम मैं मोह दुख भारी एहो भवजल जगत न जाई तरना गुरमुख तार हर तारी रहाउ त्रै गुण माया मोह पसारा सब वरतै आकारी तुरिया गुण सत संगत पाई नदरी पार उतारी चंदन गंध सुगंध है बहु बासना बहकार हर जन करनी उत्तम है हर कीरत जग विस्थार कृपा कृपा कर ठाकुर मेरे हर हर हर उरतार नान

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउमै ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिया सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे सतगुर सेव है आप गवाए हौ तिन जन के सद लागो पाए हौ जीवा सदा हर के गुण गाई गुर का शब्द महा

मनमुख मोहे मुग्ध गवार, अन दिन तंदा करत विहाय, मरमर जम्मह मिले सजाय, गुरमुख राम नाम लिव लाई, कूड़ै लालच ना लपटाई, जो किछ होवै सहज सुभाय, हर रस पीवै रसन रसाय।

जमुना गोदावरी सरस्वती ते करह उदम धूर साधु की ताई। किलविख मैल भरे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। तीर्थ अठ सठ मजन नहाई सत संगत की धूर परी उड नेतनी। सब दुरमत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी तपै भगीरथ आनी। केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चरावत गाऊ। मिल हर जन शोभा पाई जितने तीर्थ देवी थापे। सब तितने लोचे हैं धूर साधु की ताई। हर का संत मे

नानक ललाट होवै जिस लिखिया तिस साधु धूर दे हर पार लंघाई। मलार महला चौथा तिस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे तिस की भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचन करन सुन त्यावे भव सागर पार परे रहाऊ तिस जन के हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाईऐ सब दुर्मत मैल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्तै जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन एह प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै जन नानक हर दे।

सोई हर जन का हर आपे जन मह आप रखांत तन तन गुरु नानक समदर्सी जिन निंदा उस्तत तरी तरांत मलार महला चौथा अगम गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलोह करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अन दिन हृदय नाम त्यावे है सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे सृष्ट सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभु कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया मलार महला चौथा गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई मनमुख मूड जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पछताई।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक।

जाई, सार संभाल माता मुख नीरै, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभ दाता, भूलह बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जह जाता रहाऊ। चंचल मत बारक बपुरे की, सर्प अग्न कर मेलै, मात पिता कंठ लाए राख, आनंद सहज तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नव निध नाम निदान ग्रह तेरा, मन बांचै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या एह कीनी, बारक मुख

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निद छोड़ आन को पूजह, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना दार हो प्रभ करते।

कहो नानक मेरो बन्यो सुहागो पत सोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाऊ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निदान नानक मन वसिया बहुड़े दुख ना थिया मलार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजै मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदौ भयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरियो संसार कठन पै सा।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु तहाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास।

जगदीश्वर देखत सदा हजूरे नानक रब रहे हो सब अंतर सर्ब रहे आपर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना पारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप है करुणा मैं नानक सद बलिहारी मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर हाट नाम रास सांझी कर जन स्यो जाओ ना जम कै घाट रहाओ तार अनग्रहो।

अचुत अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर न जोनी मात मलार महला पंजवां बहु विद माया मोह हिरानु कोट मध्ये को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानु रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानु लोग दराय।

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है गुर उपदेश हर हृदय वस्यू सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाऊ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करू इशनान साची दरगाह पाई मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटे ना हुए जोन अवतार गुर की सेवा सो जन पाए जां को कर्म लिखिया तुर आई गुर मेरी जीवन गुर आधार गुर मेरी वर्तन गुर परवार गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रब आप मलाई अपने सेवक को लय प्रभ लाई ताकि कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुख दाती तुमरी कृपा ते तू चित आवह।

काल गुआया करता है आप, सदा सदा मन तिसनु जाप, दृष्ट धार राखे सब जंत, गुण गाव हो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवा, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सलाही, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाई रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोई।

ओरी सगल श्रृंगार तजे ओरी सगल विकार ताव तू अस्थर थिया रहाऊ ऐसे रे मन पाए कै आप गुआए कै कर साधन सिंह संग बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिय अमोग तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने

पिए नह दुख सा कहलाहे पज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे। मलार महला पंजवां प्रिय की सोभ सहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी नीकी गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी साध संग रामैया रस।

रहाउ। दर्श सफलियो दर्श पेखियो, गए किल बिख गए, मन निर्मल उजियारी, विषम विषम विषम भई, अग कोट हरते नाम लई, गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही एक तू ही, भगत टेक तुहारी, जन नानक सरण द्वारी, मलार महला पंजवां, बरस सरस आ गया, होहे आनंद सगल भाग रहाउ। संत संगे मन परफड़ै, मिल मेघ धर सुहाग, कन घोर प्रीत मोर, चित चातरक बूंद ओर, ऐसो हर संगे मन मोह।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श

अंजन कागद कोट एहो जग है बपरू रंगन चेहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोए जन्म मरे खिन ताई नदी उप कंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर मार।

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन श्रृंगार करी तेता तन तापे कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दी याद खाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

गुर कै तकिए सा चैतान, नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै भावै दर लहस प्राण, बूढ़ा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मागना चालन हार, जित कर वसै है तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै, करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै, पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै

अचार करै विवेक बुद्ध पाई, पुरखै पुरख मलाई। धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाई। लाहा हर सत संगत पाई, करमी पल्लै पाई। सतगुर विण किन्हैं ना पाया, मन वेखो हृदय विचार। वड भागी गुर पाया, भव जले उतरे पार। हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कृपा करहो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार। मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर, मेटना ना जाय। नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर भाणा पाए। मलार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा। त्रै गुण करे विचार, बिन नावै जम डांड सह। मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे मुख।

हर हर नाम त्याई रहाऊ, हरे अपने भाणे सिष्ट उपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

निज कर होवे वास, जम काल सिरों ना उतरै अंतर कपट बनास। हर नावे नु सब को प्रताप दा, विण भागा पाया ना जाए। नजर करे गुर भेटिया, हर नाम वसै मन आए। नानक नामे ही पत उपजै, हर स्यों रहा समाए। मलार महला तीजा, अष्टपदी घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए। दुख पल्लर हर नाम।

कमल परगास, तित काट नामे नाम निवास, हऊ मैं भगत करे सब कोई, ना मन पीजे ना सुख होए, कह कह कहने आप जनाई, बिरथी भगत सब जन्म गवाई, से भगत सतगुर मन पाई, अन दिन नाम रहे लिवलाई, सद ही नाम वेख है हजूर, गुर कै शब्द रहया भरपूर, आपे बख्शे दे प्यार, हम मैं रूप

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी न आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवलश पाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की

राम राजा आया दैंता मारी ताई हुक्म सबाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंदे लाए आप छपाया धर्म कराए कर्म तुरह फरमाया सलोक महला दूजा सामने आया हे सखी संत चित करे हो नानक चूर मर है दुहागनी जिन अवरी लागा ने हो महला दूजा सामने आया हे सखी जल हर पर सनहार नानक सुख समन सुहागनी जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख विण कलम मसवाणिए सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

साथियों केव रहसी रंग रंग रहया तिन कामणी जिन मन भाऊ भाऊ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख न हुई महला तीजा ऊनव ऊन व्याया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यों मन भंग पौड़ी दोए तरफा उपाय एक वरतिया वेद बाणी वरताई अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोए विच धर्म फिर रह बारिया मनमुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी निश्चो दरगाह हारिया गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया से

वरसै लाए झड़ी नानक पाणै चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार।

ऐसे पुत भंडार उथै हाथ ना अपड़ कूक ना सुनिए पुकार उथै सतगुर बेली होवे कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा, कलमल होई।

लाई अन तन उपजै बहु कणा कीमत कहन ना जाय। नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संबाहे। जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लहम लाए। दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिलया जाए। आपे जोड़ विछोड़े।

जो हर चरणी रहे लिवलाय। ज्यो जल मह कमल अलिप्त है ऐसी बणत बणाई, से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाय। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समवाय। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है, जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो, तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए, सहसा मूल ना होवई।

आई। नानक तिनका आख्याप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार। गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया।

वरसै कृपा तार नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मरार पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए गुर कै शब्द विचारिए गुण मह रह समाए अपना आप आप तोलसी आपे मिले मलाई तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाए हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाई जगत मुस्से अमृत लुटिए मनमुख बूझ ना पाई विण नावे नाल ना चलसी जासी जन्म गवाई गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया दूतां का किस ना वसाई सलोक महला तीजा बबीहा ना बिललाए ना तरसाए एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्ने ते खोतरै चढ़ै चवगल वन महला।

जल पाई विचों आप गवाई। नानक जिस बिन चसा ना जीव दी सो सतगुर दिया मलाई। पौड़ी खंड पताले असंख मैं गणत ना हुई तू करता गोविंद।

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

पड़ी। आपे जगत उपाय कै गुण औगण करे विचार, त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार। गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह होए खुआर, जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार। सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार, जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार। तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार, जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवां, रात ना विहावी।

गुर कह सहज सुपाई मेघ वर्ष दया कर गूढ़ी शह पर लाई बबी हे कूक पकार रह गई सुख वस्या मन आई नानक सो

मनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोय सेवड़ भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट हो।

सदा तिसकै सद बलिहारै जाउ गुरमुख शब्द संभालियै सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाउ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाहि नानक हुक्म ना जापई किथे जाहि समाहि फसल आहारी।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिललाई खसमे भावे उहा चंगी जे करे खुदाई खुदाई सकता सिओ मारे सह मिरिया सब पिछे पै खाई हुए सताना कुरै ना मावे।

सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जा।

जिस पाणा मन वसाई, अपने पाणे कहो किन सुख पाया, अंधा अंध कमाई, बिख्या कदे ही रज्जे नाही, मूरख भुख न जाई, दूजे सब को लग विगुता, बिन सतगुर बूझ ना पाई, सतगुर सेवे सो सुख पाई, जिसनों कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला। शर्म धर्म दोए नानका, जे तन पल्ले पाई, सो तन मित्र ना कांडिया, जित सिर चोटा खाई, जिनकै पल्ले तन वसै, तिनका नाउ फकीर, जिनकै हृदय तू वसै, ते नर गुणी गहीर। महला पहला। दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए ता लगे है दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी भुख, रूपी भुख ना उतरे, जा देखा ता भुख, जेते रस शरीर के तेते लगे है दुख। महला पहला। अंधी कमी अंध मन, मन अंधे ताने अंध, चिक्कड़ लाया क्या थी है, जा टुटे पत्थर बंद, बंद टुटा बेड़ी नहीं, ना तुलहा ना हाथ, नानक सच्चे नाम विण केते डुबे साथ। महला पहला। लख मन सोयना लख मन रूपा, लख साहा सिरसा, लख लश्कर लख वाजे नेजे, लखी घोड़ी पातशाह, जिथे शायर नंगना, अगन पानी असगाह।

पियो तिन क्या खुशियां क्या पीड़ धरती पाताली आकाशी एक दर रहन वजीर एक ना बड़ी आरजा एक मर होहे जहीर एक देखा हिन खुटे नाही एक सदा फिर है फकीर हुक्मी साजे हुक्मी ताहे एक चसे महलाख

बुद्धि मिथ्या, बिन सच्चे व्यापार जन्म वृथ्या, अंत न पारावार न किन्ही पाया, सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया, चले नाम विसार तावन तत्या।

अनक माध कपाह तोय हो त्रिभवन गन्ना तुआ आख हो बो बिदह छा तुए बहुत बेकारा ए तेरा सुछोड़ हो।

आप खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलाखे गोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रविया सब ठाई, जित तू लाए सचिया तित को लगे, नानक गुण गाई शुद्ध।

गोपाल राय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्र साला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राचीले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुन जाचै डांगिया द्वारै चित्र गुप्त लेखिया तर्म राय।

जाचै भस्मति सुऐ सारा जा त्रिपवनपति जाचै कारे कूरमा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिपवन धनी जाचै कर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंत।

मानिय है शेख शहीद पीरा, जा कै बाप वैसी करी, पूत ऐसी सरी, तिहूं रे लोक प्रसिद्ध कबीरा, जा के कुटंब के ढेर सब ढोर टवंत फिर है, अजहो बनारसी आस पासा, आचार सहत बिपर करह डंडौत, तिन तनै रवदास दासान दासा मलार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत प्यारो प्राणनाथ कमन भगत ते, साध संगत पाई।

जन नानक नाम उधरिया करना महला चौथा मेरा मन संत जना पग रेन हर हर कथा सुनी मिल संगत मन पूरा हर रंग पेन रहाऊ हम अचेत अचेत न जान है गत मित गुरु किए सुचित चितेन प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिलह मन प्रीतम कट देवो ही अरातेन हर के संत मिले हर मिलया हम की

आस रहाओ। हम हर हृदय जपियो नाम नर हर, प्रभु कृपा करी कृपास। आन दिन आनंद भया मन बिगसिया, उदम भय मिलन की आस। हम हर स्वामी प्रीत लगाई, जितने सास लिए हम ग्रास। किल बिख दहन भय खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है, मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास। अवगने आरे पाथर पहारे, सत संगत मिल तरे तरास। जेती सृष्ट करी जगदीशर, ते सब ऊच हम नीच बिख्यास। हमरे अवगुण संग गुर मेटे, जन नानक मेल लिए प्रभ पास। कानड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक। हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ। नाना रूप रंग हर केरे, घट घट राम रवियो गुपलाक। हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिख्या के ताक। संत जना की बहुत बहु शोभा, जिन उर तारियो हर रस कर साक। हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक। हर के संत जना मह हर हर, ते जने उत्तम जनक जनाक। तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुश्की मुश्काक। तुमरे जन तुम ही प्रभ किए, हर राख ले हो आपन अपनाक। जन नानक के सखा हर पाई, मात पिता बंदप हर साक। कानड़ा महला चौथा, मेरे मन हर हर राम नाम जप कीत। हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत। रहाओ मिथ्या भरम, भरम बहु भ्रमे।

परचै राम रविया घट अंतर, अस फिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लह ना उतरै कबहू, हर हर जाय मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक।

परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ रहाउ स्वामी अपै निरंजन नर हर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर।

राम तेहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख लेहो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड़ हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित कर आन।

कुल सगल तराधु कानड़ा महला चौथा हर जस गाव भगवान जस गावत पाप नहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निध दुख बदारन सुख दाते सतगुर जां को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधारै ओट पराधी खिन महतारै जां को चीत आवै गुर अपना तां को दुख नहीं तिल सुपना जां को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

रचना अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब

कैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभु जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जा कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जा कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भये ठाकुर स्यों।

कथाना बहुर न कतहु तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम कौ बन आई जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहिया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै धरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

भोजन करना अपैदान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाओ नह तृप्तानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा मोहल्ला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगले आस होत पूरन कोट

धन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाय रहाव। ईत ऊत कहाँ लुभाव है एक स्यो मन लाय। महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय। सगल त्याग सरण आयु नानक लेहो मलाय। कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन। प्रभ अपना एकांत रहाओ आन दा सुख सहज मूरत तिसे आन नाही भांत। सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात। गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत। अमृता रस पियो रसना नानक।

समानो मुख बकनो मन मान रहाओ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक का।

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

बड़ाई भौजन बिखम नाम हर तारे अगम पदार्थ लाल अमोला भयो प्राप्त गुर चरनारे कहो नानक प्रभ भये कृपाला मगन भये ही रह दरसारे कानड़ा मोहल्ला पंजवा साजन मीत स्वामी नेरो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज बुरो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ केरो आगे दृष्टि आवत सब प्रगट इहां मोहयो भरम अंधेरो अटकेओ सुत बनता संग माया देव नहार दा तार बसेरो कहो नानक एकै पार उसो बंधन काटन हार गुर मेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरे गाहियो तुमरी टेक भरोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राचत दर्शन भेट मटाहयो भयो प्रगास आनंद उजियारा सहज समाध समाहयो कौन कह तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिनसै मोह भरम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मन है सुख पाईए साध जना मिल हर जस गाईए रहाओ कर कृपा प्रभ हृदय बसेरो चरण संतन कै माथा मेरो पार ब्रह्म कौ सिमरहो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दुख सगल मल हरसन पावन धावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आन अपाव थकत नहीं करसन कर गह लिए नानक जने अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोहकत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहं मत अन रत कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रमत लाख गरिया अनित व्यवहार अचार बिदहीनत मम मत मात कोप जरिया करुण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उधर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाउ गोविंद त्याग आन लाग है अमृतो डार भूम पाग है बिखै रस स्यों असक्त मूड़े काहे सुख मान काम क्रोध लोभ व्याप्यो।

अरबिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चेंद्र हाउ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराद गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाऊ अनक पूजा मैं बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहां पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोई ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरा नव निध नाम निधान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहे मगनेरा नैनु देख साध दर्शेरा।

टुलेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर केरे, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही ओ तरसना।

ईत हस्त पूर्ण सब संगा रहाव वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत त्रिशन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चो

करो ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीत करह तुहारी।

मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाही इन सिंह तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सुख बेहात।

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, अनड़ा महला पंजवां कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकी सरन साधुआ, दूत संग निवार, रहाओ, कोट जन्म जोन भ्रमयो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई, मिलयो नाम आधार, दलभ जन्म सफल नानक, पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुभाए अपने आए, कछु न जानो।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ। भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु। अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु। गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गु। तह अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चुआवे गु। राम नाम इक तिल तिल गावे, मन गुरमत नाम समावे गु। नाम सुनह नामो मन पावे, नामे ही तृप्तावे गु। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पांत बनावे गु। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गु। माया पटल पटल है भारी, कर घूमन घेर कलावे गु। पाप बकार मनूर सब भारी, दिख दुत्तर तरयो ना जावे गु। भौ बैराग भया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावे गु। राम नाम हर पेटी है, हर राम नाम समावे गु। अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तरावै गू। जो जो जपै सोई गत पावै, ज्यों ध्रुव प्रहलाद समावै गू। रहाऊ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो, कर कृपा नाम लगावै गू। कर कृपा सतगुरु मलावहु, मिल सतगुर नाम त्यावै गू। जन्म जन्म की हम मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गू। ज्यों लोहा तरियो संग कास्ट, लग शब्द गुरु हर पावै गू। संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवै गू। बिन संगत कर्म करै अभिमानी, कड पानी कीकड़ पावै गू। भगत जना के हर रखवारी, जन हर रस मीठ लगावै गू। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुर उपदेश समावै गू। भगत जना को सदा निव रही है, जन निवह ता फल गुण पावै गू। जो निंदा दुष्ट करह भगतां की, हरनाक्ष ज्यों पच जावै गू। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावै गू। जो जो भगत होए सो पूजो, परमन परम चुकावै गू। जात निजात देख मत परम हो, सुख जनक पगी लग त्यावै गू। जूठन जूठ पई सिर ऊपर, खिन मनुआ तिल ना डलावै गू। जनक जनक बैठे सिंघासन, नौ मुनि धूर लै लावै गू। नानक कृपा कृपा कर ठाकुर, मैं दासन दास करावै गू। कानड़ा महला चौथा, मन गुरमत रस गुण गावै गू। जिहवा एक होए लख कोटि, लख कोटि कोट त्यावै गू। रहाओ सहस फनी जप्यो सेख नागै, हर जपत्या अंत न पावै गू। तू अथाह अत अगम अगम है, मत गुरमत मन ठहरावै गू। जिन तू जप्यो तेई जन नीके, हर जपत्या हो कौ सुख पावै गो। बिदरदासी सुत छोक शोहरा, कृष्ण अंक गल लावै गो। जल ते ओपत भई है कासत, कासत अंग तरावै गो। राम जना हर आप सुवारी, अपना बिरद रखावै गो। हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर, गुर संगत नाव तरावै गो। ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो, संत जना मन पावै गू। खरे खरोए बैठत उठत, मार्ग पंथ त्यावै गू। सतगुर बचन बचन है सतगुर, पाधर मुक्त जनावै गू। सासन सास सास बल पाई है, निह सासन नाम त्यावै गू। गुर प्रसादी हम मैं बूझै, तौ गुरमत नाम समावै गू। सतगुर दाता जी जीअल को, भागहीन नहीं पावै गू। फिर एह वेला हाथ न आवै, पर तापै पछतावै गू। जे को भला लोड़ै भले अपना, गुर आगै टह टह पावै गू। नानक दया दया कर ठाकुर, मैं सतगुर भस्म लगावै गू।

मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मलावै गु सतगुर मिलत महा सुख पाया मत मलीन बिगसावै गु हर हर कृपा करहु जग जीवन मैं श्रद्धा नाम लगावै गु नानक गुरु गुरु।

सतगुर सरण त्यावै गु लोहा हिरन होवै संग पारस गुण पारस को होए आवै गु रहाउ। सतगुर महापुरख है पारस जो लागै सो फल पावै गु ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैज रखावै गु। सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गु ज्यों अमरीक अमरा पद पाए सतगुर मुख बचन त्यावै गु।

जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ, हर दर्स सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सबाया, गोविंद गाइय नित त्याय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

आई। बेकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी, पुरख परमानंदा। कानड़े की वार महला चौथा, मूसे की वार की टुनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला चौथा, राम नाम निदान हर,

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावे है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गावे है सुने है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुदे आपे जगते पाए कै तुदे आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता।

जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हों मैं रोग है भ्रम कूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम संघार।

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो हरि उत्तम हर नाम अमोल जिन त्याया हृदय दिन सरात ते मिले नहीं हर रोल वड भागी संगत मिले गुर सत गुर पूरा बोल सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो जित चूका जम झगड़ चगोल श्लोक महला चौथा हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गावार नानक हर जन हर लिव उबरे जिन संध्या तिस फिर मार महला चौथा अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन जे कर दूजा देख दे जन नानक काढ दे चन पौड़ी जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई जी जंत प्रित पाल दा जो करे सो होई मात पिता सुत प्रात मीत तिस बिन नहीं कोई घट घट अंतर राव रहया जपयो हो जन कोई सगल जपो हो गोपाल गुण प्रगट सब लोई श्लोक महला चौथा गुरमुख मिले से सजना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाहे तू लुड लुड दरगह वान्य महला चौथा हर तू है दाता सब सदा सब जी तुम्हारे सब तुदै नो आराध दे दान दे प्यारे हर दाता दातार हाथ कढ़िया मीह उठा संसारी अनजमिया खेती भाओ कर हर नाम समारे जन नानक मंगै दान प्रभ हर नाम अधारे पौड़ी इच्छा मन की पूरी है जपी है सुख सागर हर के चरण आराधी है गुर शब्द रतनागर मिल साधु संग उधार होए हाटै जम कागर जन्म पदार्थ जीती है जप हर बैरागर सब पवो हो शरण सतगुरु की बिन सह दुख दा।

जन्म जन्म की मल उत्तर है, मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटी है, हर के गुण गावे, आप तरह संगी तराही, सब कटम तरावे, जन नानक तिस बलिहार ने।

तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया थाहा ना पाया। पुस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गाव है हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहू पाया। जन को कृपा करहो मधुसूदन, हर देव हो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ। गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसिया। हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया। जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहां पया दैत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखी, जन नानक सरन पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुरुपदेश हर नाम ते आयु, सब किल बिख दुख लाथे रहाउ। रसना एक जस गाए ना साकै, बहु कीजै बहु रसनथे। बार बार खिल पल सब गाव है, गुण कह ना सकै है प्रभ तुमन्थे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी,

जिथे सब तन मन अर्पौ अर्प अरापौ कोई मिले प्रभ मिलथे हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा हम तुष कर कर बरन थे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ समरथे। कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावै हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दर्ग है प्रभ लेखा मांगे तह छूटे नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हो मैं मैल लग थई गुरतार कृपा हर जल नावाई सब किल विख पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंती अवसर आए बनत है तह राखे नाम साथी जन तेरा जस गावे हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पात्र रख बुड

हम बारिक मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहि दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

हल मकरंद चरण कमल सियो मन फेर फेर रीजै रहाओ आन जलास्यो काज न कछुऐ हर बूंद चातरक कौ दीजै बिन मिलवे नाही संतोखा पेख दर्शन ना।

सरे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा।

नैन बहन सर्वन सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ एते उत दह दिस रवियो मेर तिन है समान जात कता तत पेखी है हर पुरख।

मन गुरपूरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाउ सर्व कार्य सिद्ध भय गाय गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरिया करूं दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवां प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ हर बिन्यान न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्व कटां के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतराई।

जप न संग जम काल तिस ना खामनो मुकत जुगत अनक सूख हर भगत लवै ना लामनो प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक घटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सतगुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालख दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यो मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काड़ खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर पसम करीजै महा उगर पाप साकत लारकीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भये साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुरजी भरिया क्यों करतान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर किरपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जीव जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हु जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

जाए साधु चरण लगीजै, राम नाम कीर्तन रतन वथ, हर साधु पास रचीजै, जो बचन गुर सत सत कर मानै, तिस आगै काज तरीजै, संतोहो सुनहो सुनहो जन पाई, गुर काढ़ी बाह को कीजै, जे आत्म कौ सुख सुख नित लोड़ हो, तां सतगुर सरन पवीजै, जे वड भाग होए अतनीका, तां गुरमत नाम दृढ़ीजै, सब माया मोह बिखम जग तरीयै, सहजे हर रस पीजै, माया माया के जो अधकाई, विच माया पचै पचीजै, अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा, अहंकार भार लद ली।

एक वार प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध भये उदासी देवी मर्म ना पाया बाबा मन साचा मुख साचा कही है तरिय साचा होई।

तलब ना होई। प्रभाती महला पहला जा कै रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया।

चल जाय। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह।

कांच तस्कर तावत राखी, चूका मन अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक कर, प्राप्त पाती तान, दूध कर्म संतोख कियो कर, ऐसा मांगो दान। खिमा तीर्ज कर गौ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए, सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला, आवत किने ना राखिया, जावत

उल्टी नदर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण, जिसते हो आसोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो प्रवान, प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है। हाँ।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी कहो ना देखिया जाए खोटो पूठो।

आई जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

जिसनो नदर करे सोई बिद जान मैं मैलो उजल सच सोए उत्तम आख ना उचा होए मनमुख खूल महा बिख खाई।

कहावै सोए। प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल वधाया पेंद घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ। बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादे मारी है छूटस साच नाय। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो

जर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन्ना दुख भूख किश नाही। नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चै शब्द समाहे। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा त्यावहु। जब लग जी प्राण, गुर शब्दी मन निर्मल होआ। चूका मन अभमान, सफल जन्म तिस प्राणी केरा। हर कै नाम समान, मेरे मन गुर की सिख सुनीजै। हर का नाम सदा सुख दाता, सहजे हर रस पीजै। रहाउ मूल पछाणन तिन निज कर वासा, सहजे ही सुख होई। गुर कै शब्द कमल परगासिया, हम मैं दुर्मत खोई। सब नाम है एको सच वरतै, बिरला बूझै कोई। गुरमति मन निर्मल हुआ, अमृत तत्व खानै। हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन मानै। सद बलिहारी गुरे अपने बिटहो, जित आत्म राम पछानै। मानस जन्म सतगुरु ना सेविया, बिरथा जन्म गवाया। नदर करे ता सतगुर मेले, सहजे सहज समाया। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे भाग त्याया। प्रभाती महला तीजा, आपे भांत बनाए बहुरंगी।

आधार आपे देवै सिरजनहार सच्चा मनाए अपना पाणा सोई भगत सुगड़ सुजाणा नानक तिस कै सद कुरबाणा प्रभाती महला चौथा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावह गुरमत

हृदय अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइय प्रभ अपना, मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। बड़े भाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोल है, सवरैन समाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल, हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग चार है हम बाल रहाओ, साकत को दिन रह।

कट कट रमैया रमत राम राय सब वरतै सब महईक जन नानक को हर कृपा तारी गुरबचन त्यायो करी मीक प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रवतारी मुखार हर नाम हम कहे पतत पावन हर नाम त्यायो सब किल विख पाप नहे जप मान राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायु गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाउ काया नगर नगर हर बसेउ मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगटेउ कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उदयानी ते साकत मूड मोहे ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना भ्रम भ्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देव हो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर धरियो हर राम नाम रव रहे प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने ही अरे हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन पज राम नाम हर निमुखफा हर हर दान दियो गुरपूरै हर नामा मन तन बस पा रहाउ काया नगर वसेउ घर मंदर जप सोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन भये सोहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपव हर हर हर लिव लागी हर उर तारियो गुर निमुख पा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पल फा तुमरे जान तुम ही ते जाने प्रभ जान्यो जन ते मुख फा हर हर आप धरियो हर जन मह जन नानक हर प्रभ एक फा प्रभाती महला चौथा गुर सत गुर नाम दरड़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप भा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा बिख डुब दे बाहां दे कड बहा जप मन राम नाम अर धंबा उपजंप पाए ना पाईए कतहु गुर पूरै हर प्रभ लाभा रहाउ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रस भा लोहो मनूर कंचन मिल संगत हर उर तारियो गुर हर भा हों मैं बिखिया नित लोभ लोभाने पोत कलात मोहे लुग भा तिन पग संतना सेवे कबहू ते मन मुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन भा ज्यों जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुमन भा शका एक प्रभाती बेपास पड़ताल महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन हर हर नाम निदान हर दरगाह पावह मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ

मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवां बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सहजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना वसार हो सेव हो सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरख सोग ते रह निरारा ता तू पावह प्राण पते रहाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कटंब सगल बनाए रिजक समाहे जल थल मीत सो हर सेव हो नीता नीत तहां सखाई जह कोई ना होवे कोट पराध एक खिन महत होवे।

रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के

नानक उदर है जन की सेवा, प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, समत देव हो।

त्याग नाम हर जीदा इस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया।

कोट जन्म के गए कलेश, जो तिस पावै सो पल होस। तिस गुर को हौ सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई। ऐसा गुर पाई है वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। आठ पहर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की सरनाए। प्रभाती महल।

गुरपूरा पाइय वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल खल मैयल पेखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवा कुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल सात शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला पंजवा।

संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण पई आस। सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे। प्रभाती महला।

काम क्रोध अहंकार बिनसै लगे एक प्रीत रहाउ नाम लागे दुख भागे शरण पालन जोग सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम साध संगत हर मिलै।

फुन बंध ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

मन वसाए विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से।

खंग करन है, खसम ना पावे साध, बिन नावे होर कमावना, फिक्का आवे साध, दुष्टि सभा विगुती है, बिकवाती जीवन बाद, ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई, सतगुर सेव सदा सुख होई, बिन सतगुर

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बामन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाणा बोली भाई सुपाई जो किच वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अवमान न जाई जियो अवमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप न भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास, गुरमुख विरला चीनै कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई, ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी, एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटै नाम संभाल, आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवे सोए, बिन गुर सोजी किसे ना होए, आपे करे करावे सोए, झगड़ चुकावे हर गुण गावे, पूरा सतगुर सहज समावे, एहो मन

हर जस कर्म धर्म पथ पूजा, काम क्रोध अग्नि मैं पूजा, हर रस चाखिया तौ मन पीजा, प्रणवत नानक अवर ना दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा, एको रब रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई, रहाउ मन तन आगे जीअड़ा तुझ पास, जो पावै त्यों रखो अरदास, सच जिहवा हर रसन रसाई, गुरमत छूटस।

पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे।

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया,

मन लोहट है मोहया दूजै पाई पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई हर मंदर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई नानक गुरमुख वणजिया सच्चा सौदा होई प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करह हौ मैं मैल उतार सदा जाग है कर अपना राख है पंच तस्कर काढ़ मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार्ग हर पाई है मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाए हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार हौ मैं विच जागरण ना होवई हर

आदि मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता उर्ज परयो मन मीठ मोहारा गुण गाहक मेरे प्राण आधारा एक हमारा अंतर जामी तर एका मैं टिक एकस की सिर छाहा वद पुरख स्वामी रहाऊ छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराय अमृत नाम मन रहया अघाई लोभ मोह स्यो गई विखोट गुर कृपाल मोहि कीनी छोट एह ठगवारी बहुत घर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यो ठाठ न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाय अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिवलाय इन लोगन स्यो हम भये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहु तपावस प्रभ सरबाग।

प्रभाती महला पंजवा मन में क्रोध महा अहंकारा पूजा करह बहुत विस्तारा कर इशनान तन चक्र बनाए अंतर की माल कब ही ना जाए इत संयम प्रभ किन ही ना पाया भगौती मुद्रा मन मोहया माया रहाउ पाप करह पंचा के बासरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बहुर कमावह हुए नसंक जमपुर बांध खरे कालंक घूंगर बांध बजावह ताला अंतर कपट फिरह बेताला वर्मी मारी साप नामुआ प्रभ सब किछ जानह जिन तू किया कुंवर ताप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता देश छोड़ परदेसह ताया पंच चंडाल नाले ले आया कान फराए हराए टूका घर घर मांगे त्रिपतावन ते चूका बनता छोड़ बद नदर पर नारी वेस ना पाईए महा दुखियारी बोले नाही होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाईए जोनी अनते रहता दुख देही सहता हुक्म ना बूझे व्यापिया ममता बिन सतगुर किने ना पाई परम गति पूछो सगल बेद सिमरते मनमुख कर्म करे।

कांड लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तथाई, जह सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो प्रसाद।

निधाना कहां उड़ीसे मजन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजार क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना पूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाओ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

कहिए सोई। अलह अलख न जाई लखिया गुर गुर दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन दीठा। प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे।

विनाशी माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह तोहया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया, तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया, प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत याद समाई, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाडा ब्रह्मा निगम बीचारे, अलख ना लखिया जाई, रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा, पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ता की अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत ना जानिया सर्ब निरंतर राम रहया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बिखु बन बिखे बास ते सुख लागेला सर्बे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लुकाया।

भज जन्म सिरात है, कहो कहां बार बार समझत नह क्यों गुवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है, रहाव सगल भरम डार दे गोविंद।

कर्ता पुरुख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतह कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेहं अचुत तनह किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुतह त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमन है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपं असथंबन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेहे सो परसन माध वह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत शरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं हर

वरतंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिंग नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुदा कुशल थान बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलं हृदयं।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य वह स्वांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधनं ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ पस्मं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते अतरं तरं तारन है निरतनंग तन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय घट घट बसंत वासदेव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं।

वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है, सिमरंत नानक हर हर हरि, अनित्य है रचना निर्मोहते, दानं परापूर्वेण पूचन्ते महीपते, विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है, नानक चिरंकाल दुख भोगते, वृथा अनुग्रहंग बिंद है, जस्य सिमरन रदंतर है।

पीवतं संतना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बास नह सैना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवदह गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन

अर्णी जीही पणिज्यो उत्तम सलोक उदरणं नैन नंदनी गुरमंत्रहीनस्य जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है कुकर है सूकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण है कीर्तनं साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूत नह नच दुर्लभंग धनंग रूपं नच दुर्लभंग स्वर्ग राज नह नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता बिलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणं

प्रभं जात कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममंग कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते।

नानक सीतलं साध स्वजन है, मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है, दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है, उपदेशं सम मित्र सत्र है, भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं, आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है, नानक नाम साध स्वजन है, अजापो गंत कांड मूलं बसंते समीप केह रह, तत्रगते संसार है नानक सोग हर खंग व्यापते, छलं छिद्रं कोट बिघ्नं अपराधं किल बिखमलं, परम मोहं मान अपमानं।

रमण सील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलय, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह, दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है, दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है, अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है, पै अत्मियं महानगर बासं धर्म लखियन प्रभमय, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, हे अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है, एकामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावन है, चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है, तब पै विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है, हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा ना उपर्जते, विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है, अनक शासन ताड़ंत जमदूत है, तब संगे अधमंग नर है, दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं, अनक भांत बहु डोलते, नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तव लज्जिया, अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं।

अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त सत्रं दृढ़ंत अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

मित्र है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वच्छल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अच्युत है। जेन कला धारियो अकाशं, बैसंतरं काष्ट बेष्टं। जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं, नह सिदंत जठर रोग।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धेहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनं जथा विपरा अमरहीनं जथा

श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदयं अच्युत बजंत नानक बड़ भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियान कर है विखम स्थान मन मोह मदन महा असाध पंच तस्कर है हीत मोह भय भरम भ्रमण अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहं कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगले अहं रोग खंडन है।

संत स्वजन है आचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊणंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निहपल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं।

प्रहार नह बचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मण है रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन है पत्थर पुरजीण चढ़ियं नह जड़ियं पेड़ संपता नाम बिहून बिखमता नानक बहंत जोन बासुरो रैणी पावनी साध संगेन लभंतं बड भागन है हर नाम गुण रमणं नानक संसार

गोविंद रमण साध संग मह समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमण गोविंद है नानक लब्धिहंग बड भागण है हर लब्धो मित्र सुमितो विदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो अप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत बिहैर दै गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत।

नानक हर पूर्व लिखण है दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं ब्याद उपारन संतं नानक लब्ध कर्मण है जात काथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण है तत लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरण है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बड़भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण है लब्धं साध संगेन नानक बड़भागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरण है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है होयो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण है।

कसों वरंगण है, रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया, संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा, हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा, आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है, हर हां मस्तक होवै भाग तां साजन पाई है, सखी काजल हार तंबोल सबै किस साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवै कंत तां सब किछ पाई है, हर हां कंतै बाज शिंगार सब बिरथा जाई है, जिस घर वसिया कंत सावड भागणे, तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे, हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया, हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया, आसा इती आस के आस पुराइया, सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया, मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया, हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया, कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्त।

वह सच तना सुपने ऊ भी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

साधु कर्ण मुंड कालिया रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटी है हर हां जब बिसरै गोविंद राय दिनों दिन कटी है पंकज फाथे पंख महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया है को ऐसा मीत जे तोरै बिखम गांठ नानक एक श्री धरनाथ जे टूटे ले साठ तामो दशा अनेक प्रेम प्रभ कारणी

दम किहो होती साठ, रावण हुते सो रंक नह, जिन सिर दीने काट, प्रीत प्रेम तन खच रहया, बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदे हो, बूजन सुरत संयोग, सागर मेर उद्यान बन, नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै, गनो एक कर करम, मूसन मस कर प्रेम की, रही जो अंबर छाए, बीते बांधे कमल मह, पवर रहे लपटाए, जप तप संयम हरख सुख, मान महत अर गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर, वार वार देओ सर्ब, मूसन मर्म ना जाने, मर्त हित संसार, प्रेम पिरम ना बेदेओ, उर्जेओ मिथ व्यवहार, कब दब जब जारी है, बिसरत प्रेम बेहाल।

चरण चितव मन माहि, नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहु जाहि। लख घाटी ऊंचो घनो, चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी, करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम, चंदर बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों, खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों, सूद ना सिमरत अंग, प्रगट भयो।

पवन च फूल नहार, संतोह माखन खाया छास पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बुलोया तिन खाया अवर बलोवनहार। कबीर माया चोरती मुस मुस लावे हाट, एक कबीरा नाम सै।

बोलन कबीर तास्यो प्रीत कर जाको ठाकुर राम। पंडित राजे भूपति आवे कौने काम, कबीर प्रीत।

कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई। ऐसे मरने जो मरे बहुर ना।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्भ ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी ऊपर।

अजो सोना उस मुंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट।

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाय पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाय कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाड़।

वीर थोड़ा जल माछुनी चीवर मेले ओ जाल ए तो गने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल। कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

वैष्णव की कुकर भली साकत की बुरी माए ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए कबीर।

शरीर बिन हरि भगत ना मुक्त होए यूं कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछै।

मेरा कंठ मेल चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं

सती पकारै चेहे चढ़ी सुनो हो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिस जाए जो जैसी संगत मिले।

जिन हर का नाम ना चेतेओ, बद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास नरक परह ते मानई।

पावनहार। कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम न जाए, आप डुबे चौ वेद मह चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट भये निदान सब जब पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाले।

आई सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राख नार गद ही हुई कै अवतर पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

जा मुख कहिए राम देही किसकी बापुरी पवित्र होए गो ग्राम कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांदन कंध चढ़ाए।

आई। जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए, बूढ़ा वंश कबीर का उपजयो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के

रहो हर खगुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचर है कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बिसर आए मिले परबात, जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मचूर, देवल देवल ताहड़ी

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कंठ रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा धाम कबीर साकत ते सूकर भला राख आछा गांव ओह साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

तार बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का तज मन का अपमान ऐसा कोई दास हुए ताहे

होए ऊच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए कबीर पाटन ते उजर भला राम।

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाह आएक लागत ही भुए मिल गया परया कलेजे शेक कबीर साचा सतगुर क्या कर है जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाई है फूक कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुज्जै

तै हाथ जब ही पाई है पारखू तब ही रन की साठ कबीर काम परे हर सिमरिय ऐसा।

पाछै परी बहीर एक अवघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किस काल।

संत मन आगर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोई कै जाने आपन तनी कै दास दिवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल।

के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जह अनपौ तह पै नहीं, जह पौ तह हर नाही। कहियो कबीर बिचार कह संत।

पास चोट सहारै शब्द की, पास गुरु मैं दास, कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ै, साई ना बहरा हुए, जा कारण तू बांग दे, दिल ही पीतर जोए, सेख सबूरी बाहरा, क्या हज काबे जाए, कबीर जाकी दिन साबत नहीं, ताको कहां खुदाए, कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जेहे सिमरत

तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतक हार कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह मिल गया।

ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मान नहीं होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद

हुआ मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू कबीर बिकार है चितवते झूठे करते आस मनोरथ कोई ना पूरे चाले उठ नरास कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कत है ना डोले जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छड़ाए परापूर्व ली पावनी प्रगट होई आए कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना व्यापई।

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय ले राम ना लावो चीत।

चितवे होए अपना चितवे आहर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सला।

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई थाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

अमन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारों बे दोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत नाही संत। कह नामा क्यों पाई, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह ता को बड़ो अपाग। सलोक सेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है धनवरी।

किचर छत लंघाई है छप्पर टुटे मेह परिदा जंगल जंगल क्या पवै वन कंडा मोड़े वसी रब हाली है जंगल क्या टुंडे फरीदा इनी निकी जंगी है थल डूंगर पवे ओम अज फरीदा कूजड़ा सह कोहां थे ओम फरीदा राती वड़िया तुख तुख उठन पास किग तिना दा जीविया जिन्ना वडाणी आस फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्ता आड़िया हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा फरीदा लोड़ै दाख बजौरिया।

जाए गहला रूह ना जाने सिर पी मिट्टी खाए फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियों मांझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद।

कंत सियों अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रैण विहाय सोहरे ढोई ना लह पेय नाई थां फिर वातड़ी ना पुछई।

पुजै सो तन जान मसान फरीदा ए विस गंदलां धरिया खंड लिवाड़ एक राहिंदे रह गई एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मगेसिया तू आहो केरे कम फरीदा दर दरवाजै जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल एहो नदोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल कड़िए कड़िए।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता परिदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना परिदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी।

वत कुवारी ना थी कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिनी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

आस फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरीसता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी।

तै पासो वे लद गए तू अजय ना पतीणो हे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संधि पाही। महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनो आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपया जे

चल गए फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए फरीदा पंख परहोनी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह सिउ चलन का कर साज फरीदा रात कथूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाऊ जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन को आऊ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली

सो सजन वीही एक टोंडेंदी ना लाहा तुखां ज्यों मालीही कारण तिना मां फेरी फरीदा एहो तन भौंकना नित नित दुखी है कौन कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगै पौन फरीदा रब खजूरी पक्कियां माखिया नहीं वहन जो जो वंजै दिहड़ा सो उमर हाथ पवन फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलिया कुंडह काग अजय सो रब ना बहुड़ो देख बंदे के भाग कागा क्रंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत शुहो फिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जाहे जित पिंजरै मेरा सहो वसै मास ना तिदू खाहे फरीदा गोर नमाणी सड करे ने

ना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागहु हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हो करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वेस कर ता वासिया भी कंत मत हुंदी होए आना तान हुंदे होए नताना अनहुंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए।

निराकार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो ब्यापे व्यापत देखिए जगत जानै कौन तेरी गत सर्ब की रख्या करै आपे हर पत अवनासी अवगत आपे आप उत्पत एकै तू ही एकै अन नाही तुम भत हर अंत नाही पारावार कौन है करै विचार जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार जन नानक।

तो कार आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार।

आप ही तारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्ब गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पियो अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दारी।

आकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभु तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पनिय दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिय अमृत हर को नाम लैत मन सब

गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए, हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए। कमन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कमन बिद उस्तत करिए, सिद्ध साधक तेतीस कोर, तेर कीम ना परिए, ब्रह्माद

पव जल तरना बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्स मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगत सगल हर पवन मह।

अवधारण सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तौ मूर्त करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पौ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रौ रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार करी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूज परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुख।

असव ना गाज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख।

जन हे भगवंत कृपा करता रहू प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख धरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अरदानम एक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती।

रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत, माया रंग बिरंग करत भ्रम।

ब्रह्म उधर भरियो है। दह दिस ताई महाबिख्या को पर धन शीन अज्ञान हरियो है। जोग नबीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन दन मृत मरियो है। अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त गरियो है। प्रेम भगत उदर है से नानक कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सोच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी। साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात। विदे मन दर्श मग पावक जरियो ना जात। रहियो जन धूर लग नीर ना साकस बोर। चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह। छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति। विचर है अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते। सूखम देह बंध है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत। ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका। अनक पांत

तुरत निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर निरंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियथ भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौराज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल।

नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथ ता धरियो मस्तक हथ सहज अमियो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहे आगाज मारियो कंटक काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ली समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर पर समरार जा

खवै कस बिमल बीचार है, एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी। सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो। हर परस्यो कल समुल वै,

नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगती बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अशल संसारी जिन भगत भवजल तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जीन सर्व सिद्धि कव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमृत।

क्या कहूं मुख हूं भगत उच्चरे अमर गुर इत रंग रातऊ मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परसे हो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रह।

गुर अमर पणिज नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पखिज श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनिज सक्याथ सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्याथ सो सिर

जानियो। सुपन एक प्रतख एक एक समहलीनो, तीस एक अर पांच सिद्ध, पैंतीस ना खीनो। इको जे लाख लखो अलख है, एक एक कर वर्ण्यो। गुरु अमरदास जाल पपन है, तू एक लोड़ है एक मन्यो। जे मत गही जय देव, जे मत नामे सम्मानी, जे मत त्रिलोचन चित, भगत कंबीर है जानी। रुक मांगद करतूत, राम जंप हो नित पाई, अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई। तै लोभ क्रोध तृष्णा तजे, सो मत जल जानी जुगत, गुरे अमरदास ने।

गुर अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुर अमरदास परसीय ध्यान लहिय पौ मुकह। गुर अमरदास परसीय अपौ लभै गौ चुकह। एक बिन दुगण जो तौ रह जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहियो। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल अधरन। गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कला तार जग मह परवरियो निरंकार आकार। जोत जग मंडल करियो जह कहत है भरपूर। शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो। तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो। अंगद लहने संग हो गुर अमरदास तारन तरन। जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख। पिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उभर है। छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर। हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ। पलक डबंत्य है तार है नानक कुल निम्मल अवतरियो। गुण करतार है उचरै गुर अमरदास जिन सेवियो। तिन दुख दरिद्र

शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै दीश हुक्म बुझ।

आदसनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिख

इव जोद कार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के

सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचर तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिद नाम निदान रिद सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागत।

हवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उचरै।

पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणी एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द रिद बीचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

ज्ञान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवे जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे हैं।

कार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्या

पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निससूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिखते

यो ते अकियत संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत त्या

पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पढ़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए

शब्द हर हर जपै नाम नाव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुगद मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बान निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते है कर है इशनान इशनान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु।

देख रूप अत अनूप मोह महामग पहे किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरयो हरनाख शहरयो नख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

काल मुकट शीस मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाखे अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आद

गुरु सम्राथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित बड़ो।

मतरापन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर

कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गह नात जात कबलास को जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहों लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह ज्यो कुसुम सुबासे विदह मान गुर आप थप्यो थिर।

धरियो गुर हाथ, तीन भवन भरपूर रहियो सोई। आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो। सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर। गण गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजोनी संभव। पुरखोत्तम अपार परे, करण कारण समर्थ सदा सोई। सर्ब जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह। तैं हर परम पद पायो, सतगुर नानक भगत करी एक मन। तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज धारी। अगम ज्ञान रस रसियो हियो, गुर अमरदास करतार कियो वस। वाहो वाहो कर त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह। तैं हर परम पद पायो, नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा। उब भगत हर के जो गण, अम्बरीक जय देव तरलोचन। नामा अवर कबीर पणंग, तिनको अवतार पयो कल भिंतर। जस जगतर पर छायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह। तैं हर परम पद पायो, मनसा कर सिमरंत तुझै नर। काम क्रोध मिट्यो जो तिनंग, बाचा कर सिमरंत तुझै। तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिनंग, कर्म कर तो दर्श परस। पारस सर बल भट जस गायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह। तैं हर परम पद पायो, जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन। जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावे। सोई रामदास गुर बल पाण, मिल संगत तन तन करहो। जेह सतगुर लग प्रभ पाई, सो सतगुर सिमरहो नरहो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करतना छोड्यो पास। ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर

अत हुए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानियो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई तांते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द

लोभ अपमान स्यो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंध्यो सिख तारी सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगम निग

तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुर राम दास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नान खुटै गुर राम दास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु माणियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु।

ताको हित नाम सियो परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगियो वासना ते बाहर पै देखियत धाम सियो अपार परंपर पुरख सियो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही औरै काम सियो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत कै हित पाई रहो मिन राम सियो अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माही धरी जग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए।

पछतायु तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायु जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयु काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदारन बसे है संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जानियो भयो ते समसर सोई।

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाहे पौ नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहयो कोई।

परे गुर सरवर सच्ची पाल अग्न मरे जल लोड लहो विण गुर निद जल नाही जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए मन तन मैला अवगुणी चिंज भरी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साकत।

निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाऊ जन्मे का फल क्या गणी जहां हर भगत ना पाऊ पैंदा खादा बाद है जहां मन दूजा पाऊ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा आलाऊ नानक नाम सलाहे तू होर हौ मैं आवो जाऊ हैन बिरले नाही घणे है।

ज्ञान ही नंग अज्ञान पूजा, अंधवर तारा पाउ दूजा, गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान, सच बिन साखी मूलो ना बाकी, माणू कल्ले उठी चल्ले, साध नाही अवेही गल्ले, राम चुरै दल मेल वै, अंतर बल अधिकार, बंतर की सेना सेवी है, मन तन जुज अपार, सीता लै गया दह सिरू,

जो देवे सो देवे नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां, जैसेती मेरा संग।

रह सदा सदा सुरती ही पत होए सर्फ है सर्फ है सदा सदा एवं गई विहाई नानक किसनो

होनी अंतर तिसना अग जिन्ना वेलना तू बड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिल ही वग साग।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है हत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है

अतुट भरे भंडार हर गुण बाणी उच्च रह अंत ना पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सिरजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊग ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए एक उपज है।

आई। मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई, कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाई ना पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई। जो बन जांदा नदर ना आवई, जर पहुंचे मर जाई। पुत कलात मोह हेत है अंत बेली को ना सखाई, सतगुर सेवे सो सुख पाई। नाओ वसै मन आई, नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेत।

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा। हौ सद बनिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पोयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन को पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल होया। बिख हौ मैं गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले। हर दरगाह सुबा पाए, जन नानक सदा कुर्बान। तिन जो चल है सतगुर पाए, सतगुर पुरख निर्वैर है। नित हिरदय हर लिब लाए।

आए, नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए, ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है, सा तन सुती निचिंद, जिनको पूर्व लिखिया, तिन्ना भेटिया गुर गोविंद, नानक सहजे मिल रहे, हर पाया परमानंद, सतगुर सेवन अपना, गुर शब्दी विचार, सतगुर

बिन हर शांत न आवई किस आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमान दे अंत न पारा वार। हर कृपा कर कै बख्श ले हो हौ पापी बड गुनहगार। हर जियो लेखै वार ना आवे तू बख्श मलावन हार।

जन सिज्जै बिन शब्दै मुक्त ना होई। भेख करह बहु कर्म बगुत्ते पाए दूजै परज विगोई। नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईऐ जे सौ लोचै कोई। हर का नाउ अत वड ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकै जे सौ लोचै कोई। मुख संयम हच्छा ना होवे कर भेख भवै सब कोई। गुर की पौड़ी जाए चढ़ै कर्म प्राप्त होई। अंतर आए वसै गुर शब्द विचारै कोई। नानक शब्द मरै मन मानिए साचे साची सोई। माया मोह दुख सागर है बिख दुख।

नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट

करा उपर हर चेतिया से पाइन मोख द्वार नानक आप ओहे उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द मुआ है सब कोई मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान, मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही, विच हऊ मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही, गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई, ओना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाई, मनमुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाई, नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाई, बुरा करे सो केहा सिज्जै, अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै, गुरमुख होए इस सब किस सुज्जै।

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हौ मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

भाई अपनी पत के साध आपे खाई किसका क्या सलाही है भाई दर्शन को बल जाई सतगुर विच वड़िया वड़ियाईया भाई कर्म मिले ता पाई एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फराई संगत ढोई ना मिले भाई बैसन मिले ना खाऊ नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिन्ना तुरे कमाया नाउ तिन विट हो हों वारे भाई तिन कौ सद बलिहारे जाऊ से दाड़िया सचियां जे गुर चरनी लगन अनदिन सेवन गुर अपना अनदिर अनदिर हन नानक से मुह सोहणे सच्चै दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले है सच कमाहे सच्चा शब्द मन वसिया सतगुर माही समाहे सच्ची रासी सच धन उत्तम पदवी पाहे सच सुन है सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगाह बैसना सच्चे माही समाहे नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाहे बाबी हा प्रियो प्रियो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तिस चुकै सहज उपजै चुकै कूक पुकार नानक गुरमुख

बूंद पवै सहज सुभाए, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाए। नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आए। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाए, सब

तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए हर गुण गावहु कामणी सच्चै शब्द समाए भय का सहज श्रृंगार करहु सच।

पास सतगुर मिले है जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाय हर बुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होई शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होय नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोय नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोय हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होय वडड़ै चाल चाल चलंबलै।

योग पाइए सतगुर कै उपदेश चारी कुंडा जी भवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मूख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर

नानक सतगुरु वाह वाह जिसके नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूरन पर

नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तैं प्रीतम सच्चै लाया राती अतै दे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाईऐ अन दिन रह आनंद नानक सहज समाईऐ।

कर्म कार नानक लेहो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

भव जल तरै संसार, मन चिंदिया फल पाए सी, अंतर विवेक विचार। नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए, सब दुख निवारण हार। मन मुख सेवा जो करे, दूजे पाए चित लाए। पुत कलत कुटंब है, माया मोह वधाए। दरगह लेखा मंगी है,

जाए। मानमुख हुकुम ना बुझे बपड़ी, नित हों मैं कर्म कमाए। वर्त नेम सुच संयम पूजा, पाखंड भरम ना जाए। अंतरोह कुशुद्ध माया मोहे बेदे, ज्यों हस्ती शार उड़ाए। जिन उपाय तिसे ना चेत है, बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक परपंच किया तुर करतै, पूर्व लिखिया कमाए। गुरमुख प्रतीत

सतगुर परम बीचारी जित मिले तिसना भुख सब जाए। हों सदा सदा बलिहारी गुर अपने

आए जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर शरणाई उबरे नानक लए छडाए सतगुर पुरख हर ध्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो भौजल।

पार लंगाए, गुरसिखा की हर तूड़ देह, हम पापी पी गत पाहे, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बदारियन,

लागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उधारे नानका सो सिमरे सिरजनहार दूजी छोड़ कवातड़ी इकस सौ चित लाए।

जिस पास बहते आंसू ही है सबना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौमीन बिखियन स्यों काहे रचियो निमुख न होए उदास कहो नानक भज हर मना परै न जम की फास तरन आपो इउं ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत बिरद पयो सूजै नहीं काल।

कहो नानक बिन हर भजन परत ताही जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हर

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मित्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज माना निरपै पावह बास जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो ना मन को मान दुर्मत स्यो ना।

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख

हर के जान सतगुर सतपुरखा बिना करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरणाई तर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मोह कौ राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई।

तिनका पौ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहंतु जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब तप है जपे बेंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तो जेवड़ अवर न कोई।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते तमन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल।

सहस्ताव नयन नान नयन है तोय कौ सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सामय जोत जोत है सोय हिद चानन सामय चानन होय गुरसाखी जोत प्रगट होय जोत भावे सु आरती होय हर चरण कामन मकरंद लोभत मनो

क्रोध नगर बो परया मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है।

गए बसन सुहेला औद कटै दिन सरहणारे मन गुरमिल का सुवारे रहाओ इव संसार विकार संसेम है तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे इव रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पाओ सुख सहजे बौर न होएगो पेरा अंतर जामी पुरख बेदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे।

मद देख फूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया प्रवान फिक्का बोल विगुचना

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सज सौ।

पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श न होए खोटे जात ना पत है खोट ना सीज सकोए खोटे खोट कमावना आए गया पद खोए नानक मन समझाई है गुर के शब्द सालाहा राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिनाहा हर जप लहा अगला निरपो हर मन माह।

दूर आपे ही आपे मंज म्यानो आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जोत पावे नानक हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला कर चौथा कीता कहा करे मनमान देवन हारे कहे हथ दान पावे दे न देई सोए कीते कहे कहे क्या होए आपे सच पावे ते

तते से निर्मले हौ सदबरेगारे जास हृदय जिन के हर वसे तेत कट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याय तुर मस्तक जिन को लिखया से गुरमुख रहे लिवलाय रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट बसे भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखे सदा हदूर जेन गुण तेन सद मन वसे अवगुणवंत्या दूर मनमुख गुण ते बारे बिन नावे मरदे चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया घर सोए अन दिन भगती रतया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओ सदा सदा फिर होए यो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम न चेते लिवलाए पाग खिसे रहना नहीं आगे ठौर न पाए ओ वेला हथ न आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर से ती लिवलाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है सेव पई तनताए हर गुण गावे हर निद पड़े हर गुण गाए सुमाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम ते आया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले तेत सच्चे दरबार वे अमृत पीवे।

अमृत सत्या नाम है तैना कछु न जाए, पीवत हु परवान पया पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है होर करना किशु न

करम कमाए। जात सत संजम नाम है, विण नावे निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वर्तदा, हर गुण पावे सोए। श्री राग महला तीजा, काया साधे उर्द तप करे। विचों होमे ना जाए, अध्यात्म कर्म जे करे। नाम ना कब ही पाए, गुर कै शब्द जीवत मरे। हर नाम से मन आए, सुन मन मेरे भाजे सदगुर सरना। गुर प्रसादी छुट्टी है, विघ भवजर शब्द गुर तरना। हरहाओ त्रैगुण सभा ता।

अमृत है, जिद पीते तिख जाए, त्यो मन साचा सच रता, सच्चे रहा सुमाए, आखण वेखण बोलना, सबदे रहा सुमाए, बाणी वजी चौजुगी, सचो सच सुनाए, होमे मेरा रह गया, सच्चे लया मिलाए, इनको मैल खदूर है, जो सच रहे लिवलाए, नदरी नाम ते आईये, विण कर्मा पाया ना जाए, पूरे भाग सत संगत लहे, सगुर पेटे जिसे आए, अनदिन ना मेर त्या, दुख बिखिया बिच हो जाए, नानक शब्द मिलावड़ा, नामे नाम सुमाए, श्री राग महला तीजा, अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुर का शब्द विचार, सत्संगति सदा मिल रहे, सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकाइन, हर राख्या और तार, सच्ची बाणी सचमान, सच्चे नाल प्यार, मन मेरे होमे मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना, शब्द स्वारण हार, हरहाओ सच्चे शब्द मन मोया, प्रभु आपे लय मिलाए, अनदिन नामे रत्या, ज्योति ज्योत सुमाए, ज्योति हूँ प्रभु जापदा, बिन सदगुर बूझ न पाए, जिनको पूर्व लिखया, सदगुर पेटिया तिने आए, विण नावे सब डूमणी, दूजे पाए खुवाए, तिस बिन कड़ी ना जीवदी, दुखी रहन विखाए, परम पुलाना अंधला, फिर आवे जाए, नदर करे प्रभु अपनी, आपे लए मिलाए, सबके सुनदा वेखदा, क्यों मुकर पे आ जाए, पापो पाप कमाऊं दे, पापे पचे पचाए, तो प्रवनदर न आवई, मन मुख बूझ न पाए, जिस वेखा ले सो ही वेख, नानक गुरमुख पाए, श्री राग महला तीजा, बिन गुर रोग न टुटई, होमे पीड़ न जाए, गुर प्रसाद दी मन वसे, नामे रहे सुमाए, गुर शब्दी हर पाई है, बिन शब्दे परम पुराए, मान रे निरकरवासा होए, राम नाम सालाए तू, फिर आमन जान न होए, अरहाओ हर इको दाता वर्तदा, दूजा अवर न कोए, शब्द सलाही मन वसे,

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़े, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय। तब एको एक वर्तदा, अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए। गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन ले जाए। मन तन शीतल सब थीए, नाम से मन आए। हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे। गुर कै शब्द पछाणिए, जां आपे नदर करे। छे जन सब दे सोने, ते सच्चे दरबार। गुरमुख सच्चे शब्द रते, आव मेले करतार। गुरमती सच सलाना, जेदा अंत न पारावार। धड़कड़ आपे हुमस।

तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रत्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग मोहल्ला पंजवा। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए। अंतर जोत प्रगासिया एक सिउ लिवलाए। मिल साधु मुख उजला,

संग सुमाओ हर जपिए आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेज सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कह।

संता संगत मानस प्रीतम भग सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन इस

विचार क्या छोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौण उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी परमतया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा तित्तर वसे सोहेलड़ी

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए एना, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, तू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी, तू वड़ पुरख सो जाना। रघाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत् समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। कैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता, गुरमुख कोई विरला। गात अवगत कछ नदर न आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

पाए, पुर राखे से उबरे हते स्यों निवलाए। हरजी सबत पछाणीए साजरते गुरवाक, तेत तन मैल न लग गई सच कर जिस ओ ताक। नदर करे सच पाईए बिन ना वेख्या साक, जिन्नी सच पछाणिया से सुगिए जू चार। हो मैं तिस ना मार के सच रखिया उर तार, जग में लहा एक नाम पाई गए गुर विचार। सचो वखर लदिए लाभ सदा सच रास, साची दर गए बैसई भगत सची अरदास।

आओ। सर्ज गबादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हों तिन के बलहारण दर सच्चे सतियार, सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे

सच्चा मन्या तेन मनसा चित्यान मान मुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए साजन मिले सुख पाया जम दूत मोए बिगकाए नावे अंदर होमसा नाव वसे मन आए बाज गुरु गुबार है बिन शब्दे बूझ न पाए गुरमति प्रकाश होए सच रहे लिवलाए तिथे काल ना संचरे ज्योति ज्योत सुमाए।

मैल नाहीं निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय।

तेर रहे सुहाग। भाई रे अवर नही मैं ताओ, मैं तन्ना मन धान है गुरदिया बल जाओ। अरहाओ गुरमत पात साबा तिस, तिसके संग मिलाओ। जिबन कड़ी ना जीव बिन ना वे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधला किले ना गीटाओ। बिन सतगुर नाओ ना पाई है बिन नावे क्या साओ। आए गया पछतावन जो सुन्ये कर काओ। बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत। तावलग मैल ना पाई है जावलग साज ना चीत। सब दरपे कर बाई है निर्वाणी पद नीत। हाँ गुर पूछो अपने गुर पुछकार कमाओ। शब्द सलाही मान वसे हौ में दुख जल जाओ। सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ। शब्द रते से निर्मल तक काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार। सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर गए

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरमे आप ना चीनिए कै सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये, जो बनबाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी। बिन पिर बाद सीगार दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सजाणिए पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार। इकत तागे रार मिले काल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए, वापारी बन जा रहे आए वजो लखाए। तार कुमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कतने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है

साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाई है पये किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटी है लिखिया लेख रजाए बिन

मैं तुद बिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होए हरहाओ। नाम सलाही रंग स्यों गुर के शब्द संतोख, जो दिसे सो चलसी कूड़ा मोह ना वेख। वाट बटाऊ आया नित चलदा सा देख, आखने आखे केतड़े गुरबिन बूझ न होए। नाम डाई जे मिले सच रपे पद होए, जुत पावे से पले खोटा खरा न कोए। कुरसरनाई छुट्टिए मनमुख खोटी रास, अच ताद पासा की घड़ी गए शब्द विगास।

राम नाम मन विद्या अवर के करी विचार, शब्द सुरत सुख उपजे प्रवरतो सुख सार, क्यों पावे त्यों राख तू मैं घर नाम आधार। मन रे सची खसम रजाए, जिन तन मन साय सिगारिया ते सेती लिवलाए, हरहाओ तन भय संतर होमिए एक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अनतन अग्न जराए।

सिद्ध बह देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुंजन शेख पीर सलार तार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आमन जामनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनू आखिए जिस

क्या माया कर्म कमाए तो सुख ए जो बद्ध है हम में कर्म कमाए बिन शब्दे परम न चूकई ना विचों हम में जाए बिन प्रीति भगत न होवई बिन शब्दे थाए न पाए शब्दे हम में मारिए माया का प्रम जाए नाम पदार्थ पाइए गुरमुख सहज सुपाए बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए भगत वछल हर मन मसया सहज मिलया प्रसोए नानक शब्दे हरसा लाइए कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभु कीना अपे परम पुलाए मनम कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए गुरबाणी असी जग में चानन कर्म वसे मन आए।

परम खुलाए पढ़िए कुणिए क्या कथिए क्या मुंडो पुथा जाए। चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाए निर्गुण नाम निधान है फैजे सोजी होए। गुणवंती सालाया सच्चे सच्ची सोए उलिया सहज मिलाए सी शब्द मिलावा होए। फिर सहजे सब अंध है माया मोह गुबार सहजे की सोजी पई सच्चे शब्द पार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार सहजे अदिष्ट पछाणिए निर्भव ज्योत निरंकार। हवना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे शब्द सराई है जिदा अंत न पारावार। ज्ञानिया का तन नाम है सहज करे व्यापार अन्न लाहर नाम लैन ला

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हों सतगुर विटो कुमाया जेन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया इन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया या को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए कर्म मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा।

जो जुग जुग सद पीढ़ी गुरु चलंदी, जो जुग पीढ़ी चले सदगुर की, जिनी गुरमुख नाम ते आया, हर पुरख ना कभी बिनसते जावे, नित देवे चढ़े सुवाया, नानक संत संत घर एको, जप हर घर नाम सुहंदी, हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिलतन वेल बधंदी, श्री राग महला पंजवां, शांत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीव मित्रा, गोविंद नाम सुमाले मन प्यारे जी मित्रा, हर निभगे तेरे नाले, संग सगाई घर नाम त्याई, बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे, चरण कमन चित लाए, जल तल पूरे आपन वारी, घट घट नजर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले, मन प्यारे जी मित्रा, हर बिन झूठ पसारे, मन प्यारे जियो मित्रा, बिगसा गृह संसारे, चरण कमन कर भोयत करते, सहसा दुख न व्यापे, और पूरा पेट वडभागी, आठ पैर प्रभ जापे, आद जुगादी सेवक स्वामी, भगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम, पिन घर झूठ पसारे, मन प्यारे जीव मित्रा, हर लब्दे खेप सवली, मन प्यारे जीव मित्रा, हर दर निचल मल्ली, हर दर सेवे अलख अपेवे, निचल या सुन पाया, ते जन्म ना मरण ना आवन जाना, संसार दुख मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जमदूता कशु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली, मन प्यारे जीव मित्रा, कर संता संग निवासो, मन प्यारे जीव मित्रा, हर नाम जत पर गासो, सिमर स्वामी सुखे गामी, ये सगली कुनिया, पुरबे कुमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरीम शून्या, अंतर बार सर्वत रव्या, मन उपजिया विश्वासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो, मन प्यारे जीव मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना, मन प्यारे जीव मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना, हर पिया घाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन उठे, श्री तर पाए मंगल गाए, यश पुन्नी सदगुर तुठे, लली ने लाए नौंद पाए, नाओ सर्वस ठाकुर दीना, नानक सिख संत समझाई, और प्रेम भगत मन लीना, श्री राग के शांत महला पंजवा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद दखना, हठ मजाहू मापिरी, पसे क्यों दीदार, संत सरणाई लभणे, नानक प्राण आधार, शंत चरण कमल स्यों प्रीत, रीत

सुनयोग शांत प्रेम ठगोरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखेण तर वस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए सखी मंगलो गाया यश पुजाया बौड़ ना माया होया कर गए लीने नानक प्रा प्यारे संसार सागर नहीं पोया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पागम थागे से नानक हरंग मान।

हर आपे परम पुलाएगा, हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रकाश है, से विरले के ही के हों बलेगारी तिन को, जिन घर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रकाशिया, मन हर घर मुठड़ा है, मन हर घर जपन करे, हर गुर सुननाई पज पो जिंदु, साब केल विख दुख पर हरे हरहाओ, धड़कड़ रमैया मन मसे, क्यों पाइए कित पत, गुर पूरा सदगुर पेटीए, हर आयब से मन चेत, मैं तर नाम आधार गए,

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम हुणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पचमुए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीड़ से पए पते वार हो वार नानक नाम रते से रंगोले गुर के सह सुपाए भक्ति रंग न उतरे सहजे रहे सुमाए पौड़ी सिष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संभाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूड़ सत तिनी ढाया तुद आपे पावे सो करे तुद ओते कम ओए लाया एक ना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद वखाण है माया मोह सवाए दूजे पाए हा नाम सारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता इस कबहू ना चेता जो दिनदार रिजक समाहे जम का फहा गलो ना कटी है फिर आवे जाए मानमुख किशु ना सूझे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुखदाता नाम से मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विखाए नानक सो नाओ मनो नाम सारी है जित दर सच्चे सोभा पाए महला तीजा सतगुर से सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आ पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सचे शब्द सालाना सुखे सुख निवास जब तब संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाओ पाईए मनमुख मोहे विनाश ज्यो पावे त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास तब तुदे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे ते सब कुछ मिले इतना दूर है पास तब बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगिए मन वेखो को निरजास सब तुदे नू सालहां दे दर गुरमुखा नू परगास सलोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोहे प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूर्ख दा वार दूजे पाए जगत प्रबोध दा ना बूझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तिनी नाओ पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार आपे नू आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार नानक सबदरते से मुक्त है हर जीव हेत प्यार पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे ताए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम त्याए गुर सबदी हर पाईए हर पार लंघाए मन हठ किने ना पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लए हर लाए सलोक महला तीजा नानक सो सूरावरी आम जिन विच्चों दुष्ट अहंकरण मारिया गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप हुआ सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोन सच द्वार नाम प्यारिया मनमुख मरे अहंकार मरण मगाड़िया सबो वरते हुक्म क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम वसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख वसारिया महला तीजा गुर पूरे हर नाम दिड़ाया तिन विचो परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाई कर चानन माग दिखाया होमे मार एक लिव लागी अंतर नाम साया गुरमती जम जो

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अटक लाग तार, पेगत ही जाम राव हसे, ऐसा तय जग परमलाया, कैसे बूझे जा मोया है माया रखाओ। कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना, रमैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी, एन बेद पवसागर तरना। जत पावे तां लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए, उबजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब सर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब के जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दुष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, तनक कलश एक पाया, जमे तार चोया त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ए जो बाद अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत और दुनिया परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

तेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो, सदा सदा तू है सुखदाई, निवन लागा तेरी पाई, तारक मावा जित पावा, जा तू दे दयाला जियो, प्रभ तुम ते लेना, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे पै कुंत साई, तू सबना के प्रतपाला जियो, सिमर सिमर नांग सो पाया, आड़ पैर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे न होए दुखाला जियो, माझ महला पंजवां, पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया, जल थल महियल दहत वरसाया, सांद पई बूझी सब तृष्णा, अंद पया सब ठाई जियो, सुखदाता दुख पंजन सारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नूं आप प्रतपाले।

प्राप्त होए, वह सार सुहावा तां लगे, जां संत पेटे घर सोए, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है, जे अगे सब निवन, हर सज्जन दामन लगिया, किसे ना देई बन, माणक मोती नाम प्रभ, उन लगे ना ही सन, रंग सवे नारायण, जिते मन पावन, जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन, जो प्रभ कीते अपने, सेई कहिए तन, आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्ते, नानक रंग माणन, हर जेठ रंगीला तिस तनी, जिके पाग मथन, आषाढ़ पंदा तिस लगे, हर नहो न जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग के, मानस संदियास, दोए पाए बिगुचिए, गल पैसो जम की फास, जिहा बीजे सोलने, मथे जो लखयास, रैन विखाणी पछताणी, उठ चली गई निराश, जिन कौ साधु पेटी है, तो दर गए होए कलास, कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास, प्राभ तो बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास, आसार सुहंदा तिस लगे, जिस मन घर चरण निवास, सामन सरसी कामणी, चरण कवन स्यों प्यार, मन तारता सच रंग, इको नाम आधार, विख्या रंग कूड़ा वया, दिसन सबे शार, हर अमृत बू सुहामणी, मिल साधु पी मणगार, वन तिन प्रसंग मोलिया, समर्थ पुरखे पार, हर मिलने नू मन लोचदा, कर्म मिलावन हार, जिन्नी सगिए प्रपाया, हाउ तन के सदबिरेगार, नान घर जी मया कर, शब्द सुवर नहार, कामन तिना सुहागणी, जिन राम नाम उर हार, भादोए परम पुलाणिया, दूजे लगा हेत, लगसीगार बनाया, कारज नाही केत, जित दिन दे बिनसी, चित वेले कैसन प्रेत, पगड़ चलायन दूत जम, किसे ना दे नी पेत, छड़ खड़ो तेखने माहे, जिस लगा हेत, हाथ मरोड़े तन कपे, स्याह हो वासेत, जेहा बीजे सोलुने, कर्मासन डा खेत, नानक प्रसरणागति, चरण बोहित प्रदेत, से भादोए नरक ना पाई है, गुर रखन वाला हेत, असुन प्रेम उमाड़ा, क्यों मिल गए घर जाए, तन प्यास, दर्शन कणी, कोई आन मिला वे माए, संत सहाई प्रेम के, हम तिनके लागा पाए, बिन प्रक्यों सुख पाई है, दूजी ना ही जाए, जिनी चाख्या प्रेम रस, से तृप्त रहे आगहाय, आप त्याग, बिनती करे, ल्यो प्रभु लड़लाए, जो हर कंत मलाइया, से विछड़ कते ना जाए, पावन दूजा को नहीं, नान खर सरणाए, असू सुखी वसंदियां, जिन्ना मया हर राय, कत्यक कर्म कुमामने, दोष ना काहू जोग, परमेश्वर ते पुलिया, व्यापन सबे रोग, वेमुख हो ए राम ते, लगन जन्म वे जोग, खिल में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग, विच ना कोई कर सके, इस ते रोवे रोज, पीता किशु ना हो वई, लिखिया तुर संजोग, वड़पागी मेरा प्रभ मिले, ता उतरे सब वियोग, नानक कौ प्रभ राख लेह, मेरे साहेब बंदी मोच, कत्यक होवे सार संग, बिनसे सबे सोच, मंग हिर माए सुहंदिया, हर प्रसंग बैठड़िया हां, तिनकी शोभा क्या गणी, जे साहेब मेल लड़िया हां, तन मन मोलिया राम स्यों, संग सास से लड़िया हां, ता जना ते भारी, से रहन अकेल लड़िया हां, तिन दुख न कभू उतरे, से जम के वस पड़िया हां, जिनी रावया प्रभ अपना, से जिस नित खड़िया हां, रतन जवेर लाल घर, कंडतना जड़िया हां, नारक बांछे तूड़ते, प्रसरणी दर पड़िया हां, मंगिर प्रभ आराधना, बौड़ना जन्मड़िया हां, पोग तुखार ना व्यापई, कंट मिलया घर ना हो, मन विद्या चिरनार बिंद, दर्शन लगड़ा सा हो, ओड़ गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाहो, बिख्या पोए न सकई, मिल साधु गुण गाहो, जैते उजी तै मिली, सच्ची प्रीत समाहो, अरगैली नी पार ब्रह्म, बौड़ना विछड़िया हो, बार जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगा हो, सर्व पई नारायण, नानक दर पईया हो, पोग सुहंदा सर्व सुख, जे बगसे वे प्रवाह हो, माग मजन संग साधुआ, तूड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन, सब नानो कर दान, जन्म कर्म मल उत्तर है, मनते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोही है, बिनसे लोभ सुवान, सच्चे मार्ग चल दिया, उसद करे जहान,
ਅਸਰ ਤੀਰਥ ਸਗਲ

आओ असंत अनाड़ी कदे ना बूझे, कथनी करे तय माया नाल लूझे, अंध अज्ञानी कदे ना सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुरु शब्द विचारा, आप करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना

किश रूप नहीं, किस जात नहीं, किश टंग ना मेरा, क्या मुंह ले बोले गुण बिहून, नंज पिया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न भुगानी, जिन दिए सो चित न आवी, पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट विहाजया, हार गुलम गुलामी, गौड़ी बैरागण महला चौथा, जो जननी सो जन पालती, राखे नदर मजहार, अंतर बार मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, तू सदगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है आने, तन तन गुरु गुर सदगुर पांदा, जिन हर उपदेह दे किए सियाने, रखाओ जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली, ओ राखे चीत पीछे बिच बचरे, नित हिरदे सार समाली, त्यों सदगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली, जैसे काती तीस बतीस है, विच राखे रसना मासरत केरी, कोई जानो मास काती कै किस हाथ है, साब वसगत है अद केरी, त्यों समझना की नरनिंदा करे, हर राखे पै जन केरी, पाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है, सब करे कराया, जरा मरा ताप, सिर्फ साप सब हर के वस है।

तिस गुर मिल उदरे हर गुण गा वाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रकीनी। मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पया अत गूड़ा। हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभु की हो गोली। जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली। अरहाओ करो विवेक संत जन पाई खुज हिरदे देख टंडोली। हर घर रूप सब जो सबाई हर निटवसे हर कोली। हर घर निटवसे सब जाक अपरंपर पुरख अतोली। हर घर प्रटकियो गुरपूर सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम वड़ पुरख वडोली। जन नानक अनदिन घर गुण गावे मेले सतगुर गुरु वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी। जगदीशर पुरख विधाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी। जित मार्ग हम जाते आराम मेरा मान हर से तीराते। सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते। रहाओ हर घर नाम हर घर जग अवखद हर घर नाम घर साते। तिनके पाव दो सा बिनसे जो गुरमत राम रस गाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते। दुरमत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप आप ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते। जन नानक नाम लय ता जीव हर जपिए हर कृपा ते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जी मन दाते। मेरा मन हर सेती राचे सतगुर भजन दियो अत निर्मल। जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तान बेद लियो हर साचे। जे काल के मुख जग सब गरसया कुर सतगुर के बचन हर हम बाचे। रहाओ जिनको प्रीत नहीं हर सेती ते सागत मूढ़ नर काचे। तिनको जन्म मरण अद पारी विच विष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजे हम नृत्य करे कर नाचे। आपे सावडे प्रस्वामी हम वन जारे है ताचे। मेरा मन तन जियो राज सब तेरी जन नान के सा प्रसाचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे कान। जेते तुम्हार जाने स्वामी तो सदगुर मेर मेरा प्राणे। राम हम सदगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध मत होते गुर सदगुर के बचन हर हम जाने। रघाओ जितने रस अन रस हम देखे तब तितने फीक फीका ने। हर का नाम अमृत रह चाखेया मिल सदगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सदगुर नी पेटेया ते सागत मूढ़ देवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीप कमोए पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो ते हर घर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जा प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मान तो प्रसदा ना लगे स्वामी। तो किथे हर पौ नसीए हर आपे बख्स लय पर साचा। हर आप छुड़ाए छुटिए मेरे मान जप हर हर हर मन जपिए। सदगुर की शरणाई भजको मेरे मना गुर सदगुर पीछे छुटिए। रहाओ मेरे मान सेवो सो पर सर्व सुखदाता जित सेवे निज कर वसीए। गुरमुख जाय लहु कर अपना तस चंदन हर जस तसीए। मेरे मान हर घर हर घर हर जस उत्तम लै लह हर मन हसीए। हर आप दया कर देवे ता अमृत हर हस चखीए। मेरे मान ना बिना जो दूजे लागे ते सागत नर जम कुटीए। ते सागत चोर जिन्ना नाम सारिया मन तिन के निट ना पिटीए। मेरे मान सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेवे लेखा छुटीए।

प्रभु तुमरे, मेरा जीव पिंड सब तेरी, दया करो घर दर्श दिखाओ, मेरे मन तन लोच कन्हेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर किरपार किरपा किंचित गुर कीनी, हर मिलिया अपा मेरी हरहाओ, जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम घर जानो मेरी, अनदन नाम जपी सुख पाई, निर्जीवा आस घर तेरी, गौर सतगुर दाते पंथ बताया, हर मिलिया अपा मेरी, अनदन अंध पया बड़पागी, सब आस पूजी जन केरी, जगन्नाथ जगदीश करते, सब वस गत गया।

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विचाया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमत राम रसायन जे वह हर गुण गावे। मन रसक रसक रस आघाने फिर बोर न पूख लगावे। कोई करे उपाप अनेक भो तेरे बिन कृपा नाम न पावे। जन नानक हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दिरड़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम करामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा। वड़भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गोर हा रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड़भागी मिल सूड सुजानी जियो। मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा। वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा। आओ सखी गुण कामन करी खा जियो। मिल संत जना रंगमाने रलिया जियो। पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो। हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो। मेरे मंत्र प्रेम लगा कर ठोले जियो। मैं मेले मित्र

मिटे कलेस सुखी हो रही है। ऐसा दाता सुखुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हर भाव जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाना, जन ऊपर पर भय दयाल, जन की टेक ए गोपाल, एक काल एको मन भाव, सर्वन दान जन के हर नाव, पार ब्रह्म सिउ लागी प्रीत, निर्मल करनी सची रीत, गुरपुरे मिटिया अंधेहारा, नानका प्रभ अपरे पारा, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, जिस मन वसे तरे जन सोए, जाके कर्म प्राप्त होए, दुख रोग कछु पौ ना व्यापे, अमृत नाम हृदय घर जापे, पार ब्रह्म परमेश्वर त्याईए, गुरपुरे ते ए मद पाईए, रघाओ करण करामन हार दयाल, जी जंत सगले प्रतपाल, अग्न अगोचर सदा बेंता, सिमर मना पूरे गुरुमंता, जाकी सेवा सर्वन दान, प्रभु की पूजा पाइये मान, जाकी टहल न बिरती जाए, सदा सदा हर के गुण गाए, हर कृपा प्रभु अंतर जामी, सुख दान हर लख स्वामी, जी जंत तेरी शरणाई, नानक नाम मिले वडियाई, गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, जी जुत जाके है हाथ, ओ सिमरो अनाथ को नाथ, कब चित आए सब दुख जाए, ऐसा बिन से हर कै नाए, बिन हर पौ काहे का माने, हर विसरत काहे सुख जाने, रहाओ जिन तारे वो तरण अगास, जाकी जोत जी परगास, जाकी बक्सना में टेकोए, सेमर सेमर प्रभ निरप होए, आठ पैर सिमरो प्रभ नाम, अनक तीर्थ मज्जन स्नान, बार ब्रह्म की सरणी पाहे, कोट तलंक फिर मैं मिट जाहे, बेमोताय पूरा पासाहो, प्रभु सेवक साचा वेसाहो, गुरपुरे राखे देहात, नानक पार ब्रह्म समराथ, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, गुर प्रसाद नाम मन लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, अमृत गुण उच्चरे प्राबाणी, पूरे गुर की सुमत पुराणी, प्रा सिमरत कुशल सा पाए, तार बार सु सह सुबाए, रखाओ कोई पिछाता जने उपाया, हर कृपा प्रभु आ मिलाया, पां पकर लीनो करे अपना, हर घर कथा सदा जप जपना, मंत्र तंत्र औषध पुने चार, हर घर नाम जी प्राणे धार, साचा तन पायो हर रंग, दुत्तर तरे साध के संग, सुख बैसो संत सज्जन परवार, हर तन खट्यो जाका नाए सुमार, जे प्राप्त से गुरदे, नानक बिरथा कोई न हे, गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, हत पुनीत होए तरकाल, बिन सजाए माया जंजाल, कसना रमो राम गुणनीत, तुख पावो मेरे पाई मीत, लिख लेखन कागज मुसवाणी, राम नाम हर अमृत बाणी, रघाओ ए कार्य तेरे जाए विकार, सिमरत राम नाही जम मार, धर्म राय के दूत न जो है, माया मगन न कछु है मोह, उदरे आप करे संसार, राम नाम जब एक अंकार, आप कमाओ अपरा उपदेश, राम नाम हृदय परमेश, जाके माथे एहो निधान, तोई पुरख जपे भगवान, आठ पैर हरा गुण गाओ, कहो नान कहो तुस बल जा।

जाको रास हारस आयो तो अनस नहीं लपटायो। जाका कहया दरगह चले सो किस को नदर ले आवे तले। जाका सब कुछ ताका होए नानक ताको सदा सुख होए। गौड़ी महला पंजवा जाके दुख सुसम कर जापे ताको काड़ा काम ब्यापे। हेज आनंद घर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय हरहाओ। जाके चिंत बसे मन आए ताको चिंता कत हो नाहे। जाके बिनसो मन ते परमा ताके कछु नाही डर जमा। जाके हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ताके सगल निधाना। गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन में थाना गुर प्रसाद किने विर ले जाना। तय कथा के अमृत कुंटा जिसे प्राप्त तिसले पुंचा। हरहाओ अनहत बाणी थान निराला ताकि तुन मोहे गोपाला। तय सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता। हरख अनंत सोख नहीं दिया तो घर गुरु नानक को दिया। गौड़ी महला पंजवा कमन रूप तेरा आराधो कमन योग ताया ले साधो। कमन गुण जो तुझ ले गावो काबल मोर पार ब्रह्म रिझावो। रहाओ कमन सो पूजा तेरी करो कमन सो विद जिद पवजल तरो। कमन ताप जिद तपिया होए कमन सो नाम होमे मलख होए। गुण पूजा ज्ञान ध्यान नान सगल कहाल जिस कर कृपा सदगुर मेले दयाल। इस ही गुण

बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत या बाप न माई, सोयना रूपा फुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुर बख्श मलाया, तिसका साथ

पाते मोय असनाहा, मीत हमारा अंतरजामी, समरथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नान प्रा तेरे, गौड़ी महला पंजवा, जा को तुम पै समरथ अंगा।

आओ। चरण कमल आराध भगवंत, हर सिमर ते मिटी मेरी चिंता, सब तज अनाथ एक सरण आयो, ऊच स्थान तरसे जे पायो, दूध दर्द परम पव नसया, करण हार नानक मन बसया, गौड़ी मोहल्ला पंजवां, कर कर टहल रसना गुण गाओ, चरण ठाकर कई मार्ग थाओ, पलो समो सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पे पार उतरिया रहाओ, नेत संतन का दर्शन पेख, प्रभ अविनाशी मन में लेख, सुन कीर्तन साध पै जाए,

सब तुम ते तू अंतरजामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुग वरते सब तेरा पाणा हुगम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवां ताका दिस पाई गे वडभागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वसिया मनमाही ताको दुख सुपने पी नाही हर हाओ सरबन धन राखे जनमाघे ताके संग केल विख दुख जाहे जानकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्र बिनो सुनीजे दास की तूर नानक को दीजे गौड़ी महला पनवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मन आए

मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मल ले जाई रहाओ हर की कथा हृदय बसाई मन बांझत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कर दिवसे भगवान ओ नानक से ही जन पूरे जिना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी मोहल्ला पंजवा खांदा पैन दा मुँह कर पाए इसनु जो है तू तरम राय तिसो बेमुख जिन जियो पिंड दीना और जन्म पर में बोजू न रहाओ सागत की ऐसी है रीत तुझ करे सगल विपरीत जियो प्राण जन मन तन खारिया सोई ठाकर मनो बसारिया बदे विकार लिखे बोकागर नान कुदर कृपा सु

उठत सोवत हर संग पैरुआ जाके सिमरन जमनी डरुआ रघाव चरण कम प्रदे निवास सगल दुखा हो या नास आसा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक मां गरीबिन साध अनाथ नान प्रव राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर घर नाम अजन कर सूचे और ग्रहण पुन फल मूचे रघाव हर के चरण हृदय मैं बसते जन्म जन्म के किल विख नस्ते साध संग कीर्तन फल पाया जमका मार्ग दृष्टन आया मन भय क्रम गोविंद आधार ताते छिट्यो बिग संसार हर कृपा प्रभु की नो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरण आई जिन घर जाते मन तन शीतल चरण घर आते पए भंजन प्रामन नाम बसाही डरपत डरपत जन्म बोत जाही हरहाव जाके हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथता के पूर्ण काम जन्म जरा मृत जिस बात तो समर्थ सिमर साध ग्रास मीत साजन सगा प्रप एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बाहर आखिर दे समाल घर आए गोविंद लय नाल हर हर नाम संतन के।

आओ दुट दूत परमेश्वर मारे जनकी पैज रखी करतारे बादशाह सहसा बस कर दीने अमृत नाम मारस पीने निरपो होए पजो भगवान साध संगत मिलकी नोदान सरण परे प्रभ अंतर जामी नान कोट पकरी प्रभ स्वामी गौड़ी महला पंजवा हर सिंह राते पाए ना जले हर सिंह राते माया नहीं चले हर सिंह राते नहीं डूबे जला हर सिंह राते सुफल फला सब मिटे तुम्हारे नाय केट संग हर हर गुण गाए रहाओ हर सिंह राते मिटे सब चिंता हर स्यों सो रचे।

साई मीतला तू संग हमारे बाह जियो रहाओ, खुद बिन करी ना जीवना त्रग रहना संसार, जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी, हस आलम्बन देव प्रभ घर तो उदर गोपाल, मोय निर्गुण मथोरिया तू सदगी दीन दयाल, क्या सुख तेरे समला हवन विधि विचार, शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महार समाहे, हो प्रसन्न पै केसवा से दिन हर गुण गाहे, माल पिता सुध बंद को तू मेरे प्राण आधार, सा संग नानक भजे हितरिया संसार, गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावे, सर्व कल्याण सुख सुध पावे, हरहाओ बन मन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन घर पाया से वडभागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहे, जोगी जति सिद्ध अर आहे, जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे, ताकि सरंजन बिसर तनाही, वडभागी घर संत मिलाही, जन मरण

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी गए जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना।

पायो बाल बुध सुखरे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जौला होक सोचो चितव तौलो दुखन भरे जौ कृपाल गुर पूरा फिटिया तो आंद सहज जेती स्यानप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जौ लो मेरो मेरो करतो तौलो भे केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलयो तौ लो डान परे पोट डार गुर पूरा मिलया तो नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्याग्यो री त्याग्यो त्याग्यो मैं गुरमल त्याग्यो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आगे ओ रहाओ मान अवमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरकना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासुरी एक स्वामी उद्यान दृष्टा गयो निरपो पय संत प्रमंडारियो पूर्ण सर्वाग्यो जोगज करते कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओर तुहारी परयो आयो शरणाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रख।

सकल बिसारी परमस्त गुरपूर है तरयो मन जीतो जग सारी तृप्त अघाए रहे रिद अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मुके आचरज एक सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेट्यो तो बिसरी तात पराई कहो न जाई यो अचंपो सो जाने जिन चाखया कहो नानक सच पै बेगासा गुर निधान हृदय लै राखया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरणी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे महापुरखन यों कहया बिन घर भजन नहीं निस्तारा।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय।

मन त्रिवतासिया अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिर पवन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्व किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेव, बिन गुर अंत न पाए अपेव, आप भुलाए आपे मत देव, दुर्मत हरणास दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा थारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट मैं खसा, हरणास ले नहो बेदासा, दय संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साह भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम न चीन्या अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित कुवारी, दार कर महिला से सुखाली, तैनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हृदय सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सद पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े गए पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, पर पंच व्याध त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कबल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बिना से सगल विकारी, पत मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख शूट सुहा।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोल पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पाओ परमे पूले आप हो जाओ मनमुख सूतक कभे न जाए जिचिर शब्द न भीजे हर कहे नाए रहाओ सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जमे वारो वार सूतक अग्न पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता किस खाहे सूतक करमन पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सदगुर सेवे सूतक जाए मरे न जन्मे काल न खाए सास्त सिमरत सो देखो कोए विण नावे को मुक्त न होए जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार काल में गुरमुख उतर सपार साचा मरे न आवे जाए नानक गुरमुख रहे सुमाए गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा हर जू राखो हृदय उर तारा गुरमुख सोभा साज दुआरा पंडित हर पढ़त जो विकारा गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए गुरमुख मैल न लागे आए गुरमुख नाम से मन आए गुरमुख कर्म धर्म सच होई गुरमुख अंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई लोग समझावो सुने ना कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डंप बहु चतराई जो किछ कमावे सो थाए ना पाई आवे जावे ठौर ना काई मनमुख कर्म करे बहुत अपमाना बागजो लाए भए नित्याना जा पकड़िया तब ही पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पद नामे वड्याई सायर की पुत्री बिदार गवाई नानक बिन नावे झूठी चतराई गौड़ी महला तीजा ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई पूरे गुरसब सोजी पाई ऐथ अगे हर नाम सुखाई आराम पढ़ो मन करो विचार गुरप्रसादी मैल उतार रहाओ वाद विरोध न पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर के शब्द सच ले लाए हौ में मैला एव संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर पेटे जम करे खुवारा सोजन साचा दे हौ में मारे गुर के शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नट बाजी पाई मनमुख अंदर है लबटाई गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी अंतर सिना फिरे अंकारी आप न चीने बाजी गारी कापड़ पैर करे चतराई माया मोहे अद परम फुलाई बिन गुर सेवे बहु दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गृह अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवा से वड़पागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तेत उपजे दे मोह प्यासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम घर राखे सदगुरु मिलाया अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पढ़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला तत न चीने बन्ने पंड पराला मनमुख अज्ञान कुमार गपाए हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए पवदल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे।

पद पाईए, ना मने सुख होए, सगुर ते नाम पाईए, धर्म मिले प्रसोए, सगुर ते जो मुह फेरे ओए क्रम दे ना टिकन, तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन, यो जग परम भुलाया मोहे ठगो ली पाए, जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए, सगुर सेवन सो सोने होमे महल गवाए, अवधरते से निर्मले चले सतगुर पाए, हर प्रदाता एक तू, तू आपे बख्श मिलाए।

त्यागण सहजे सोय, सहजे होता जाए सोय, सहज बैराग सहजे ही असना, सहजे चूप सहजे ही जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिट्यो सगल दोराओ, सहजे होवा साधु संग, सहज मिलो पार ब्राह्मण संग, सहजे गृह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन कीनासी, जाके सह मन पया आनंद, ताको फिट्या परमानंद, सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान, सह कथा में आत्म रसया, ताके संग अबनासी वसया, सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहद शब्द बजाया, सहजे रोण चुनकार सुवाया, ताके कार पार ब्रह्म सुमाया, सहजे जाको परयो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सच धर्मा, जाके सज पया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने, गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया, पुत्र कलत्र कुटाम संग जुरिया, भोजन अंग प्रकार बो कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे, कम स्थान जो कहू न टरे, कामन शब्द जित दुर्मत हरे रगाओ, इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया दिन सबताला, गिर तर तारण गगन अरतारे, रस पवन पावक नीरारे, दिन सरायण वर्त अर्पेदा, सात सिमरत दिन सह गए बेद, तीर देव देवरा पोथी, माला तिलक सोज पाग होती, धोती डंडाओ प्रसादन भोगा, गमन करेगो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू, पस पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पासार दीजे पासारा, बिन सजाएगो सगल आकारा, सह शिवत भगत गयाना, सदा आनंद नित्य सथाना, ता संगत साध गुण रस, अनपो नगर ता सदवस, तय पो परमा सोग न चिंता, आवन जावन मृत न होता, तय सदा आनंद अनहत आकारे, भगत वसे कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत न पार, कौन करे ताका विचार, कहो नानक जिस कृपा करे, निचल थान सा संतर, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे, इसे मार राज जो कमावे रहाओ, जो इस मारे तिसको पो नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दर्घ है सिज्जे, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस हो वह गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निचल तनी, जो इस मारे

देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की होमे मलहरो। इस गुर को चूला भू पाखा, मां अग्न ते हाथ दे राखा, तिस गुर कै ग्रह टोभो पाणी, जिस गुर ते अकल कद जानी।

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह, सो सजम मेरा मन चाह, हर की प्रीत सदा संग चाल, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ, बिन सतनाही छोड़।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

सखा हर जियो गुरपुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे उड़ीनिया तर करे सेवा सीस चरणी मन आस दर्श निमाणिया सास सासना कड़ी विसर पल मुहूर्त दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे।

मोहन तो सत संगत आवे दर्श तिहाना मोहन जम नेड़ न आवे तुद जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्याग है मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पाव है मल मूत मूल जे मुक्त होते से देख दर्श सुगयाना बिन मंतनान कराज निचल पूर्ण पुरख भगवाना मोहन तू सुबल फलिया सन परवार मोहन पुत्र मीत भाई कुटम सब तारे तारिया जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनु तन कहया तेन जम नेड़ न आया बेंत गुण तेरे कथे न जाही सदगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लगतरिया संसारे गौड़ी मोहल्ला पंजवा सलोक पतत असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाप को तिन किलबख दान हार शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कम आराधिये जा पंत बिखड़ा अग्न सागर निमख सिमरत साधिये कल मले दहता सुध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर।

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन अपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखी अकारा एक सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पांड कर करे उपायो जन्म मरण मनमोह बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन का पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी तदा।

शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कैत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबताक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझ जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिडाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिट नानक जे मन सोए।

कुसुम रंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनखार जह रचो तह तह बंधन पाखे जेब कदू ना छूटी है साकत तेऊ कुमार।

या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दर्ग कहे न को आओ बैठ आदर शुभ देव वा मेल नहीं पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्त कर्म लिखो तुर जाक हर संप नानक करता के श्लोक लालच चूड बेकार मोह व्याप्त मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रस राते अंग बुद्ध माया मद माते या माया में जन्म में मरना ज्यो जो हुक्म तेरे त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गैर गंभीर अथाह दूसर हई अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एके आप अवर न हो मनहार होश आया ओवा का अंत न काहू पाया पीठ हस्त में पूर समाने पलट पुरुष सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना श्लोक आत्म रस हे जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनदन नाम त्यावे रंग आवत सोजन नाम है राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर के दर्श सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम सुमाओ पौड़ी यैया जारो दुर्मत दो तिसे त्याग सुख से जेसो यैया जाए परो संसरना जे आसर या भवजल तरना यैया जन्मन आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारिये गुर पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ये बिखया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही बासेती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते भौर न आया श्लोक

साधु संगत तव बस जो आपन होए दयाल टोहे टाहे बो पावन बिन आवे सुख नाहे तले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिना से कद के सलोक ठाक न हो तीतन हो दार जे हो वो सो प्रसन्न जो जन परम अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मनुआ ठा है नाही जो सगल चाके के लबटाही ठहक ठहक माया संग मुए ओवा के कुशल न कत हु हुए ठाण परी संते संग बसया अमृत नाम तहा जी रसया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक ओवा का मन शीतलाया श्लोक डंडौत बंधन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा यो नहीं जय डेरा तय जान ओआ डेरा का संजमो गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाले ताक का तसु नहीं संग चाले ओआ डेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूर्ण भगवान ने।

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए। टहे तो टहेद अब टह परे साजना सरनाए, दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए।

सकले हो प्रीत करो एक स्यो यह सचा असने हो कारण करण करामनो सबद एक हाथ जित जित लाभो तित तित लगे नानक जंत अनाथ स्लोक दस एक निहारिया सबका दे मनहार सास सास सिमरत रह नानक दर्श।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जब जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाए सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम सही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निध निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊज ते ऊंचा मन अपने गए सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब परमय ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परे उपकार माह। ब्रह्म ज्ञानी कै नागी तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हो सो फल ब्रह्म ज्ञानी सोबल फल। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सिद्ध का करता ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रे रूपना पेखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा तब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे, इंद्रिजित पंच दुख ते रहत नानक कोड मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते होए पिन्न, कर्म करत होवे ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे केवल भगत कीर्तन संग रचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल तब ऊपर होवत कृपा, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गल पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिरसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सार संग पापा मन खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, तो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं शुद्ध, राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कह उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे तो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण तिमृत बूझे मूल सूख मैं जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर और तार पास प्रेत मुग्ध पाथर कौतार, सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जूत कते न पाई गे धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तुझ नदरी आया, दाद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निट हर जान, हो दास दर गए प्रवान अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सोजी पर सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म खेतावे, जीवन मुक्त सौ कहावे तैसा हरक तैसा ओ सोग, सदा अनंत नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा ही जुत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का रखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग प्रभ पावे सोई पुन हो, पसर आप हो अंत तरंग लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तुत करे अनेक जान अंत न पारावार, नानक रचना प्रभृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार, कई कोट नर्तन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर, कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਧਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਤਰ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤ੍ਰਿਜੀਵ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਤੀਵ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤਹੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਤਖੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਹੱਥ ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਲਨ ਵਿਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਨ ਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਦਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ।

प्रवते हुए प्रम है सुमत ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम प्रगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुख सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तु भावे सोई होग खिन में था था पनहार अंत नहीं किस पारा वार हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ भावे मानु गद पावे प्रभ भावे ता पात्र त्रावे प्रभ भावे बिन सास्ते रख प्रभ भावे ता हर गुण पख प्रभ भावे ता पतत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप सुवामी खेले बिगसे अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मान गुते क्या होए आवे जो तु भावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तु भावे सोई करे अनजानत दिखिया में रत जे जानत अपने आप बच परमे पूला दर्द तावे निवख मैं चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दैज प्रटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिण सत की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करामन।

विचार कबू ऊब कस पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कबू नित करे बोपात कबू सोए रहे।

कृत में आवे, कबहू पला पला कहावे, यूं प्रवरा के तिवही रहे, गुर प्रसाद नांग सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तड़ती स्नान, कबहू सिद्ध साधक हो ज्ञान, कबहू कीड़ हस्पतंग हो जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

गत नानक जब एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है। प्रभ की जोत सगल कड़ सो है। तनवंता होए क्या को गर्भ है।

अनदरूप मंगल सुजाक सर्व थोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साधक संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कर्ण सो प्रसमरथ गिरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सो कोवनत बाचे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोबा को करे पली करनी सा सोबा पजहर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्वन धान मय हर नाम धान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन न लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा घर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवां नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवां नानक मित्राई ते सियो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगला मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई। श्लोक महला पंजवां डिठड़ो हबठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन